0: Family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
2: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Powered by Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Vanisha Radio par.
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट.

0: एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चकचाल कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
1: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
2: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
1: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
2: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
3: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
3: Barista House, richness of biryani bliss.
5: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeepu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
6: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
7: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
6: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
7: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
8: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? आई नो मुझे थोड़ी सी देर हो गई. आज ना 75 से आई वॉज ड्राइविंग ऑल द वे फ्रॉम डालस, नॉर्थ डालस से, प्रेस्टन हॉलो से, एंड आई टुक 75 टू रीच हियर इन मिकिनी. और वहाँ पे ना इतना बड़ा एक्सीडेंट हो रखा था, पांच पांच छः छः गाड़ियाँ का एक्सीडेंट वन आफ्टर द अदर, एंड प्लस कॉप कार. सो इट वॉज लाइक अ रियली बिग ट्रैफिक. सो इफ यू आर ड्राइविंग ऑन दैट रोड, गाइज जस्ट बी केयरफुल बिकॉज यू डोंट नो वट्स हैपनिंग ऑन द रोड दीज डेज. मुझे तो आजकल लग रहा है सभी के एक्सीडेंट हो रहे हैं. थोड़ा ध्यान से चलाओ. कुछ लोग, कुछ अजीब सी एनर्जी चल रही है. वीनस इज इन रेट्रोग्रेड. मर्क्यूरी तो नहीं पता, इस बार वीनस इज इन रेट्रोग्रेड. तो इसीलिए दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा. अगर आप इसी तरह से गाड़ी के एक्सीडेंट में फंस जाते हैं एंड यू हैव सम काइंड ऑफ एन इंजरी, देन यू नीड टू कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा. ही इज़ अ पर्सनल इंजरी अटोर्नी एंड यू पे नथिंग अनलेस ही एक्चुअली विन्स. कॉल 4693005046 और विजिट अटर्नी ओमर डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल्स. तो गाइज विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट दिस शो ऑन द रोड बिकॉज आई हैव बिन ऑन द रोड फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट लाइक 50 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग एंड आई एम आउट ऑफ इट टोटली. But it's okay. I'm here with you until 10 and we're gonna keep it up.

0: एंड गाइज, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई कौन है, दिस इज इपी द हिपी ओनली ऑन फनेशा रेडियो 104.9 FM एंड यू आर लिसनिंग टू माय शो एन इवनिंग इन डेलस। एंड लाइक ऑलवेज मैं आपके पास लेकर आई हूँ बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग गाने, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग दैट यू मे और मे नॉट रिलेट टू, बट दैट्स ओके, वी आर नॉट गोना गेट इनटू दैट। And lots of other announcements too. Announcement की बात करते हुए guys, आगे बढ़ते हैं। AG Fintax, this part of the show is brought to you by AG Fintax. भाई it is कल 15 September था, it was already the time to file your third quarter taxes. तो अगर आपने third quarter taxes नहीं भरे हैं अपने, you know, वो prepay नहीं करते taxes वो वाला, so then you should better get on with it, don't get late, okay? Yesterday was the last day to file your third quarter taxes, and if you need more help, call AG Fintax because they can help you with trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping, business and advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com. So, you know, ये जो reminders जो मैं दे रही हूँ, मेरा काम है नहीं, ये AG Fintax का काम है। तो अगर आपको इस तरह से help चाहिए, then they are the people who you should be getting in touch with. Aage badhte hue guys, aapko pata 8 o'clock is our giveaway and we're about to go into a break in about 5 seconds. So stay tuned. When you come back, then we're going to play lots more amazing music.
1: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
2: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
3: होचो
4: होको
3: होचो
4: होको
3: होचो,
4: इट्स होको। अरे बस भी करो यार।
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
4: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूड़ी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
6: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में, वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ी, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: Not some or price?
6: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
9: Main heroin hu.
10: We need to talk.
11: अब क्या हुआ?
10: Nothing. It's not you.
11: Oh no.
10: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
10: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
6: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
12: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com।
13: अजी सुनते हो?
14: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Phanasia Radio.
15: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
13: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
16: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

guys, we are back. You're listening to Ippi the Hippie only on Fun Asia Radio 104.9 FM and this is my show. An evening in Dallas. भाई 7:30 बज चुके हैं. इट इज मिड वीक एंड आई नो यू प्रोबेबली डोंट हैव डिनर प्लान्स येट. अगर आपके डिनर प्लान्स नहीं है देन यू नीड टू गो डाउन टू हैंग ऑन द फ्लेवर लाउंज. यस, बिकॉज नाउ दे एक्चुअली नॉट टुडे बट मे बी ऑन द वीकेंड दे हैव अ ऑल वीकेंड लंच बफे एंड इट साउंड्स रियली अमेजिंग. दे हैव लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल, फ्रेश फ्लेवर्स, बहुत कुछ है यार. Everything is just for like 25 bucks, specifically 24.99. Enjoy the buffet on Saturday and Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. अपने दोस्तों को लेके जा सकते हैं, family friends को लेके जा सकते हैं and make your weekend delicious at the Flavor Lounge in Frisco.

गाइस टुडे ना आई सॉ दिस मोस्ट अमेजिंग वीडियो. ओके सो आई लाइक टू वॉच अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट. आई एम श्योर यू गाइस ऑल्सो लाइक टू डू दैट. लेकिन कौन से पॉडकास्ट कैसे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. कुछ तो बहुत ही बकवास होते हैं. कुछ तो यू नो दे ब्रिंग पीपल ऑन जस्ट टू इंसल्ट देम. देर इज दिस वन अमेरिकन गाय हुज अ लाइक अ सो कॉल्ड फाइनेंशियल पॉडकास्ट और वो लाता है कपल्स को जस्ट उसकी बदनामी करने के लिए. बिल्कुल एकदम ही इज लाइक रिपिंग दम अपार्ट एंड नॉट इन अ नाइस वे. इट्स ह्यूमिलिएटिंग, इट्स इंसल्टिंग एंड इट्स लाइक रेज बेट. इट्स दैट इज नॉट नाइस बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इट बिकॉज इट्स जस्ट इन इट्स जस्ट एंटरटेनिंग. बिकॉज यू नो कई बार आप दूसरों के दुख देखकर खुद को खुशी होती है कि चलो मैं तो उस बोट में नहीं हूँ. सो लॉट ही गेट्स अ लॉट ऑफ विजिटर्स एंड अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन दैट्स नॉट द फाइनेंशियल पॉडकास्ट दैट आई लिसन टू. आई लिसन टू दिस गाय कॉल्ड रमीत सेठी हु इज एन इंडियन ऑफकोर्स. वेरी रिस्पेक्टफुल, टॉक्स लाइक ही रियली नोज हिज स्टफ एंड वेरी मच्योर कॉन्वर्सेशन. एज इफ लग रहा है आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ नहीं, आप एक थेरेपिस्ट के साथ बात कर रहे हो. लेकिन आज मैं उन दोनों के बारे में नहीं बोल रही हूँ. आज मैं बोल रही हूँ एक डिफरेंट पॉडकास्ट के बारे में दैट आई केम अक्रॉस. दिस वन इज कॉल्ड रीलर्न विद काश एंड दिस इज अ 2 hour लॉन्ग यूट्यूब वीडियो. इफ यू गेट अ चांस टू व्यू दिस वीडियो देन यू शुड चेक इट आउट. द पॉडकास्ट नेम इज रीलर्न विद काश और कैश, व्हाटएवर हाउएवर यू वांट टू से, विद अ K-K-A-S-H. एंड ही इंटरव्यूज बेसिकली दिस लेडी कॉल्ड डॉक्टर तमन्ना who has this thing known as angel therapy. So, angel therapy, to khair, she said ki I had to coin that word because, you know, she feels that she was gifted with the powers of intuition and psychic abilities. And India mein jab wo thi, tab a lot of people would see that and look at it from a negative perspective ki aap bhi aatmaon se baat karte ho and all that. And she was like, नहीं वैसा कुछ नहीं है. I was able to generally look at people and then tell them what's going on. Astrology भी नहीं करती है. She reads something known as the Akashic Charts and it's very interesting. And I saw that entire podcast where basically she was like talking about karmic debts and आपके current life में अगर आपके life में कुछ ऐसा चल रहा है that you can't somehow explain either relationships not working out ya phir aap ek kisi job mein ho and you're constantly getting a toxic boss no matter whichever job you try or like you constantly repeating the same relationship patterns over and over again or like you know some family karma and I saw this pura 2 hour video. The whole thing is so interesting. If you guys get a chance definitely I would recommend you to check it out. कई बार कुछ चीज़ें होती है दैट वी कांट एक्सप्लेन वॉट इज हैपनिंग एंड समटाइम्स यू जस्ट नीड एन अदर वर्ल्डली एक्सप्लेनेशन फॉर सर्टन थिंग्स विच यू नो जस्ट सीम आउट ऑफ योर कंट्रोल. सो या डेफिनेटली आई वुड टू चेक इट आउट. द नेक्स्ट सॉन्ग आई एम गोना प्ले फॉर यू इज लिग्गी बाय ऋत्विज. अगर आपने ये वाला गाना नहीं सुना ये भी यू शुड लिसन. मैंने तो बहुत बार ही बजाया है बट द वीडियो इज स्पेशली इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर आपने मुसाफिर कैफे देखा है और उसमें जो मेन कैरेक्टर वाली जो लड़की है शी इज़ एक्चुअली इन द वीडियो. शी इज़ डांसिंग अराउंड लाइक दिस न्यूली नई नवेली दुल्हन एंड इट्स रियली क्यूट. सो डेफिनेटली चेक इट आउट.

0: तो गाइस, इन अदर न्यूज, अगर आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, शादी, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई स्पेशल ओकेजन, बर्थडे पार्टी भी चलेगा अगर आपकी उस स्केल की बर्थडे पार्टी है, वेनेसा इवेंट्स को कॉल करिए बिकॉज दे हैव ग्रेट वेन्यूज, डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय बसेरा ग्रैंड. कॉल हरी बसेरा एट 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर. तो भाई, खुद से प्लानिंग जब करते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है. यू हैव टू कोऑर्डिनेट सो मेनी थिंग. जस्ट गिव इट टू समवन एल्स. इट्स ऑलवेज गुड टू डेलीगेट एंड यू कैन जस्ट कम ड्रेस्ड टू योर ओन ओकेजन एंड बी द शो स्टॉपर एट योर पार्टी. व्हाई डू यू वांट टू गो रन अराउंड एंड डू दिस, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग, केटरर का कॉल करो, ये टू मच झंझट. Give it to someone else. I will see you in 5 minutes. Have a good time.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
5: Documents या parcel भेजनी है?
6: हाँ.
5: घर relocate करनी है?
6: हाँ.
5: गाड़ी भी transport करना है?
6: हाँ भाई हाँ.
5: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर.
7: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. Our move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
8: जिंदगी एक रंगमंच है.
9: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग,

0: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग,
3: डैलस। आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पनेशिया।
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है।

0: मंडे आज का हमारा गिव अवे, यस योर फेवरेट फन पिज्जा किचन इज बैक। तो गाइज खेले आज का गिव अवे, फन पिज्जा किचन का गिव अवे क्या है? वेल पहले तो फन पिज्जा किचन इज बैक विद देयर न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जाज विद फुल ऑन फ्लेवर फिएस्टा। यू कैन ट्राई द फिएस्टा वेजी या फिर फायरी पोलियो लोको या फिर सी फूड पैक्ड सीनियर कैमरॉन एंड बहुत कुछ, मूचो माचो पोर्क एंड ऑल ऑफ दैट। दे हैव सो मेनी अमेजिंग फ्लेवर्स, सो डेफिनेटली गो ट्राई आउट सम ऑफ दोज। अगर आज का आप आंसर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, यू कैन विन अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन एंड यू कैन रिडीम इट फॉर एनीथिंग ऑन द मेन्यू। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रीटी ईजी। ओके सो लेट्स गेट इन टू आवर गेम। सो आई एम गोना टेल यू अ स्टोरी and then you have to tell me what is the name of the Bollywood movie. I'm only going to select one winner, so whoever is the first caller gets the prize. theek hai, to let's play. Dun, dun, dun. Once upon a time there was this one girl, she was very seedhi saadhi bholi bhali kind of nerdy looking girl, you know, and she was the daughter of this super wealthy rich man. एंड देन उसके बाद क्या होता है, वन ऑफ द गाइज हु यूज टू वर्क फॉर दिस रियली सुपर वेल्थी रिच डैडी ऑफ हर्स, ही वॉज लाइक, उसने उसको, अरे भाई कॉल आई नो आ रही है लेकिन गाइज हम अभी गिव अवे खेल रहे हैं, सो यू गॉट टू वेट फॉर द कॉल। ओके सो बेसिकली देन वॉट हैपन्स इज दिस गाय हु यूज टू वर्क फॉर द फादर, ही डिसाइड्स टू hit on this chick and he goes like, नहीं मैं तो आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो dad goes like, नहीं यार, we really like you bro, so ठीक है, why not, let's get you guys married। उसके बाद वो दोनों शादी वादी करते हैं, they feel like they're in love and all of that। लेकिन उसके बाद वो honeymoon पे जाते हैं और honeymoon पे जाके they are on a lake और ये बंदा जो है वो बहुत ही वैसे टाइप का निकलता है, एकदम यू नो लाइक नॉट सो नाइस और सारा नाटक ड्रामा एंड एवरीथिंग। सो ही व्हाट ही डज इज दे आर ऑन अ बोट और वो ना उस जिस नदी में ये लोग जा रहे होते हैं बोटिंग करने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं, क्रॉक्स या फिर एलिगेटर्स इन अमेरिका, एंड उसको पानी में फेंक देता है, पानी में फेंक देने के। एंड वी हैव आवर फर्स्ट कॉलर, आई थिंक ओ कट गया, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर लो यार, कई बार कॉल कट जाती है। तो एंड हियर वी गो, हाय कैन यू हियर मी, हाय कैन यू हियर मी,
1: यस आई कैन हियर यू।
0: ओके फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम एंड देन टेल मी द करेक्ट,
1: द नेम इज कमलेश, द नेम इज कमलेश, आई डोंट नो द करेक्ट आंसर बट द आंसर आई एम ट्राइंग टू गिव इज हसी तो फसी।
0: नहीं बिल्कुल भी नहीं वो तो दूर दूर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बट गुड ट्राई, आई विल गो टू द नेक्स्ट,
1: परिणीति चोपड़ा एंड सिद्धार्थ।
0: नो नो नो नो, दिस इज वे ओल्डर देन दैट वन, यू इसको पानी में क्रोकोडाइल में फेंक देता है यार। ओके चलो चलो, नो प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर द ट्राई। हाय कैन यू हियर मी,
1: यस।
0: ओके पहले तो आप अपना नाम बताइए, देन टेल मी द नेम ऑफ द मूवी।
1: माय नेम इज संजय एंड आई थिंक द मूवी नेम इज खूनभरी मांग फ्रॉम रेखा एंड डैनी।
0: यस दैट इज करेक्ट, जहाँ पे रेखा वापस बन ठन के आती है। ओके ग्रेट संजय, प्लीज स्टे ऑन द लाइन, कांग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं आज का गिव अवे। तो गाइज मैं गाना लगाती हूँ, संजय आप लाइन पे बने रहिए एंड देन आई विल टेक योर इन्फो आफ्टर दैट, ठीक है? ओके गाइज एंजॉय दिस सॉन्ग, द मूवी इज करेक्ट, इट इज खून भरी मांग। अगर आपने नहीं देखी है तो देखो, इट्स लाइक अ कमबैक स्टोरी, इट्स अ प्रीटी एंटरटेनिंग मूवी। मैं तो बहुत बार देखी क्योंकि जी सिनेमा पे बहुत बार आती है, वो थी एटलीस्ट जब मैं इंडिया में थी, लेकिन वी विल सी यू इन अ बिट।

भाई गाइस, आपको वो वाला गाना याद है? दिस इज फ्रॉम द मूवी साथ ही आना. द मूवी इज वेरी बैड. आई मीन इट्स कम्प्लीटली, इट्स सो रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ एवर, वी आर नॉट ब्रेकिंग डाउन और एनालाइजिंग द मूवी राइट नाउ. वी आर जस्ट इंजॉइंग द सॉन्ग. लेकिन उसमें जो विवेक ओबरॉय का जो रोल था ना, आई फील सो बैड समटाइम्स दैट विवेक ओबरॉय वॉज सच अ ग्रेट एक्टर एंड ऑल्सो सच अ गुड लुकिंग एक्टर विद अ ब्यूटिफुल हेड ऑफ हेयर. और उसकी डांसिंग स्किल्स भी बड़ी अच्छी थी. पीपल यूज टू कंपेयर हिम टू लाइक ऋतिक रोशन. ऑफकोर्स नाउ ही लुक्स लाइक एटलीस्ट 30 years ओल्डर देन ऋतिक रोशन डज. एंड ऋतिक रोशन लुक्स लाइक ही इज गेटिंग यंगर एंड यंगर, वेयर एज विवेक ओबरॉय लुक्स लाइक ही इज लॉस्ट ऑल हिज हेयर अनफॉर्चुनेटली. और मतलब डार्क सर्कल्स वगैरह. आई सॉ अ रिसेंट इंटरव्यू एंड ही इज लाइक लेफ्ट बॉलीवुड ऑल टुगेदर एंड ही इज डूइंग समथिंग एल्स. ही इज बिकम सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल गुरु, आई थिंक, आई डोंट नो, बट आई मीन ही वॉज समथिंग एल्स. आई यूज टू रियली लाइक हिम एंड हिज ब्रेकअप विद ऐश्वर्या राय लाइक आई थिंक कम्प्लीटली मेस्ड हिम अप. हाउ एवर, that's what we were talking about yesterday guys. remember we were talking about breakups and how to get over a breakup. and kai bar breakup itni zyada zabardast ho jati hai that it is actually a real physical pain. it manifests in actual physical illness in your body. yeah, that we were talking about all these. it's not just about hormones and it's not just like kai bar people try to diminish your heartbreak by saying oh come on it's just a stupid relationship. But you know what? It's not just a, you know, breakup from just another relationship. Something, sometimes these can become very intense. So we will continue that discussion today. Lekin wo discussion karne se pehle ye gana Zimran who has requested this song from this new movie called Dadi Ki Shaadi. Bhai dadi ko bhi shaadi karne ka bada shauk hai. तो क्यों नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए. मतलब वाई नॉट, शी ऑल्सो हैज सम मोर इयर्स इन हर यू नो वॉलेट वट एवर पॉकेट. ओके, एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड सेंटी. अगर आपने नहीं देखी है, इट फीचर्स कपिल शर्मा एंड नीतू सिंह एंड इट्स आउट ऑन नेटफ्लिक्स. सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू वॉन्ट टू.

तो गाइज वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप्स. तो अगर आपका ऐसा कभी ब्रेकअप हो जाता है, वॉट इज योर कोपिंग मैकेनिज्म? वॉट इज इट दैट यू डू दैट हेल्प्स यू गेट ओवर द ब्रेकअप? ओके, या फिर एक्चुअली डोंट टेल मी, कल तो हमने पूछ लिया लाइक वॉट हेल्प्स यू टू मूव ऑन. हाउ एवर टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट साइंटिफिकली हेल्प्स द ब्रेन हील. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्ट हियर, बिकॉज येस्टरडे वी वर ट्राइंग टू यू नो प्रूव फैक्ट्स की लव एंड रिलेशनशिप्स आर नॉट जस्ट अबाउट हार्ट्स एंड इमोशन, इट्स एक्चुअली अ न्यूरो साइंस एज वेल, राइट? तो वैसे वॉट हेल्प्स द ब्रेन हील? मे बी इफ यू इम्प्लीमेंट द साइंटिफिक मेथड्स, मे बी यू कैन गेट ओवर द ब्रेकअप फास्टर. नाउ वॉट डज साइंस से? ठीक है, फर्स्टली टाइम जेन्युइनली डज चेंज की ब्रेन की एक्टिविटी. तो ऑफकोर्स देर इज सो मच एविडेंस टू बैक दैट अप. फॉलो अप स्कैन्स एंड सम हार्ट ब्रेक स्टडीज, दे हैव शोन दैट द रिवॉर्ड सर्किटरी विच इज इन साइड आवर ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू एक्सेस फोटो या एक्स का नाम देखते ही, वो धीरे धीरे कम होता जाता है ओवर सब्सिक्वेंट मंथ्स. हाँ, महीने बोला है. पर्टिक्युलरली एज द पर्सन बिल्ड न्यू रूटीन्स एंड एक्सपीरियंसेस. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं एंड यू स्टार्ट न्यू एक्टिविटीज़ एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, देन इट्स काइंड ऑफ ईजियर टू गेट ओवर अ पर्टिकुलर पर्सन और योर ब्रेकअप. सेकंड, नॉवेल्टी एंड न्यू गोल्स मैटर, स्पेशली न्यूरोलॉजिकली. तो इसका मतलब क्या है? रिमेंबर द रिवॉर्ड सिस्टम जो है आपके ब्रेन में, इट क्रेव्स स्टिम्यूलेशन एंड रिवॉर्ड. ठीक है, तो वी गेट अटैच टू पीपल बिकॉज यू नो वी आर क्रेविंग दैट रिवॉर्ड सिस्टम की वो थोड़ा सा डोपामीन रश. अरे एक्स का कॉल आ गया, अरे यू नो एक मैसेज आ गया, यू नो दैट जस्ट अ लिटल बिट ऑफ अटेंशन, एक लाइक तुम्हारी स्टोरी पे डाल दिया इंस्टाग्राम पे, यू नो दोज आर लाइक स्मॉल लिटल थिंग्स. अ न्यू हॉबी, समटाइम्स थिंग्स लाइक अ न्यू हॉबी, सोशल कनेक्शंस, न्यू फिजिकल एक्टिविटी, मे बी यू गोइंग टू द जिम, मे बी यू ट्राइंग अ न्यू पिलाटीज क्लास, दिस गिव्स द सेम डोपामीन सर्किटरी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रिवॉर्ड which some psychologists argue can help you pull away from ruminating over an ex. तो अगर आप you know, ये तो normal वाली चीज़ है, ये तो बहुत लोगों ने बोला है कि you know if you are trying to get over someone then just trying out new activities like take a walk in the park if you don't do that, or some people start journaling or signing up for a dance class. I mean these are things I've actually done that when I was getting over this like really intense breakup I had like 10 years ago. Actually went and joined salsa dancing. One, two, I decided I'm going to record my album. And I did that actually. So it actually helped me a lot. To aur kya bola hai is bare mein? We will talk about it after this little song. Come back. If you have a song request, feel free to call me 972-235-5555. And we will continue this discussion all the way until 10 o'clock today.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
4: Fear not, we have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
11: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
10: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
11: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
10: और एंटरटेनमेंट,
11: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
10: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
11: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
12: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Ducttime celebrates its first anniversary in Dallas. For Ducttime services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
15: Before we get on to the next part of the show, this is a quick little request for Sanjay.

तो गाइस जैसे हम बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट हेल्प हील योर ब्रेन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप. तो पहली दो चीजें हमने बोली, क्या बोली? फर्स्ट थिंग वाज ऑफ कोर्स, लेट मी ओपन इट अप. यस, दैट यू नो रिवॉर्ड सिस्टम जो है, यू नो फर्स्ट थिंग जो मेन चीज है कि टाइम हील्स ऑफ कोर्स. जितना ज्यादा टाइम आप ब्रेकअप में रहोगे, उतना ज्यादा टाइम यू नो यू विल फील बेटर इन अ फ्यू मंथ्स. बेसिकली यू हैव टू गिव इट टाइम. सेकेंडली, गेटिंग बिजी इन अदर एक्टिविटीज, सेटिंग अ न्यू चैलेंज, अ न्यू गोल, अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस. चाहे आप योगा ट्राई कर रहे हैं, पिलाटीज कर रहे हैं, या फिर मे बी यू ट्राई अ न्यू जिम, और मे बी यू ट्राई अ ड्रॉइंग और अ पेंटिंग क्लास, और मे बी आई डोंट नो, इट कुड बी एनीथिंग. मे बी यू ट्राई अ न्यू जॉब, समटाइम्स इवन अ जॉब हेल्प्स ऑनेस्टली. लाइक एनीथिंग कैन हेल्प. फाइंडिंग अ न्यू हॉबी, लाइक लर्निंग हाउ टू कुक और वट एवर, यू नो लर्निंग सिंगिंग. सो दीज आर थिंग्स. थर्ड चीज जो है पता है क्या? सोशल सपोर्ट. तो इट सेज दैट कि अगर आप डिपेंड करते हो अपने फ्रेंड्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर आफ्टर ब्रेकअप, इट्स नॉट जस्ट इमोशनली कम्फर्टिंग. ऑफकोर्स फ्रेंड्स और फैमिली वाला सपोर्ट है, इमोशनल कम्फर्ट भी मिलेगा, बट इट हैज़ अ रियल डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन द ब्रेन डिस्ट्रेस रिस्पॉन्स. मतलब आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है ब्रेन में. कॉर्टिसोल सीम्स टू बैलेंस आउट व्हेन देयर इज मोर सोशल एक्टिविटी. एंड फाइनली, दिस इज द वन विच एक्चुअली सरप्राइजेज मोस्ट पीपल. सम पीपल आर लाइक कि क्लोजर होना जरूरी है, एंड विच इज इम्पॉर्टेंट एज वेल. लेकिन यू नो वॉट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट ऑल्सो से टू गो नो कॉन्टैक्ट, बिकॉज साइंस इज प्रूवन दैट जब आप नो कॉन्टैक्ट नहीं जाते हो एंड यू स्टिल काइंड ऑफ इन द जोन विथ योर एक्स अराउंड, आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रहे हो, उनकी स्टोरीज चेक कर रहे हो, देन इट यूर स्टिल काइंड ऑफ अटैच टू इट. यू आर नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन अप. ओके, देन इट देयरफॉर अ लॉट ऑफ थेरेपिस्ट से जस्ट अ क्लीन ब्रेक, नो कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द ब्रेन. क्योंकि आप जो रिवॉर्ड सर्किटरी है उसको आप तोड़ रहे हो, देन यू आर नॉट रिवॉर्डिंग योर ब्रेन बेसिकली. एंड फाइनली, फिजिकल एक्सरसाइज. जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, इट अफेक्ट्स योर मूड रेगुलेशन थ्रू सेवरल मैकेनिज्म्स. पहला तो सेरोटोनिन, दूसरा एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं. सेवरल स्टडीज ऑल्सो शो दैट ब्रेकअप रिकवरी सिग्निफिकेंटली फाउंड दैट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद फास्टर इम्प्रूवमेंट्स विद मूड एंड रिड्यूस रूमिनेशन. तो मतलब जितना आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, आप उतना कम सोचोगे अपने ब्रेकअप के बारे में, उतना मतलब यू नो यू गोना मूव ऑन फ्रॉम योर एक्स बेसिकली. तो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन. एक क्वेश्चन आपके लिए पूछना चाहती हूँ, वॉट इज वन हेल्थी थिंग दैट यू गाइज डू दैट हेल्प्स यू आफ्टर अ ब्रेकअप. जैसे मैंने बोला, लाइक 10 years अगो व्हेन आई हैड दिस लाइक सुपर बैड ब्रेकअप, आई एक्चुअली मेड सम गोल्स एंड आई डिसाइडेड ओके फाइन, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू. आई एम गोइंग टू स्टार्ट this is interesting actually. I was still in India then and I said I'm going to start kickboxing because I always wanted to learn kickboxing. So I joined a kickboxing class and second thing I did was I learned how to salsa dance and that was my thing because I always wanted to do that. And third thing, maine apne liye goal set kiya that I wanted to record an album with 5 of my original songs and I landed up doing that and I was really proud of it ki bhai I made these goals and I finished it. What do you like to do? Call me and tell me. 972-235-5555.

गाइज, अगर आप बिजनेस ओनर हैं इस एरिया में एंड यू आर फेसिंग द पावर कट्स बिकॉज ऑफ दिस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा सेंटर्स दैट आर कमिंग अप इन DFW, देन यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन जस्ट रैंडम एनर्जी सोर्सेज. कॉन्टैक्ट तारा कमर्शियल एनर्जी, बिकॉज इफ यू आर लुकिंग फॉर स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सोल्यूशन, दे आर द प्लेस टू गो. दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002 विद कंपेटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com. ओके गाइज, तो इट इज 8:48 ऑन द क्लॉक. एक गाना बजाते हूँ, उसके बाद हम वापस आएंगे एंड देन वी विल कंप्लीट आवर कॉन्वर्सेशन.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: बेटा, 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
2: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
6: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
9: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money.

0: क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
1: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस।
0: क्या मतलब?
1: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स।
0: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मनी। हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
1: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
2: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.

भाई वो दर्द भरा गाना था सोनू निगम की आवाज में। और अगर ऐसे ही दर्द भरे गाने और दूसरे वाले गाने भी सुनने हैं आपको सोनू निगम की आवाज में लाइव लाइव लाइव, देन गाइस गेट योर टिकट्स फॉर सितंबर 26 एग्जैक्टली इन लाइक 10 डेज फ्रॉम टुडे। ही इज गोइंग टू परफॉर्म लाइव एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। योर फेवरेट सॉन्ग्स आर आइकॉनिक वॉइस, ऑल ऑफ दिस इज गोना बी लाइव। टिकट्स आर अवेलेबल एट टिकट मास्टर। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो कॉल 855-360 शोज। एंड ऑफकोर्स फन एशिया नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर एंड वी विल बी देयर, मोस्ट ऑफ अस विल बी देयर एट द कॉन्सर्ट, सो मेक श्योर यू आर देयर एज वेल। ओके गाइज, हम जैसे आगे बात कर रहे थे वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप। और ये गाना सुनते सुनते ना मुझे एक चीज़ ध्यान में आया, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग, जिन्होंने मेरा शो शुरू का शो सुना था अराउंड 7 o'clock, यू नो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट दैट आई वॉज लिसनिंग टू, एंड देर वॉज दिस लाइक स्पिरिचुअल गुरु ओवर देयर। आई मीन आई वुडंट से स्पिरिचुअल गुरु, शी कॉल्स हर सेल्फ अ साइकिक, शी कॉल्स हर सेल्फ अ मीडियन मीडियम, शी कॉल्स हर सेल्फ लाइक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक चीज़ उन्होंने पता है ये क्या बोली कि अगर आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा टाइटली पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपके हाथ से छूटेगा। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू चेज एंड परस्यू लव एंड जम्पिंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू दी अदर, या फिर आज के ज़माने में इफ़ यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ दीज डेटिंग एप्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड जस्ट सो डेस्परेट टू फाइंड अ पार्टनर, देन यू विल कॉन्स्टेंटली मीट पार्टनर्स हु आर अनअवेलेबल, या फिर यू विल कॉन्स्टेंटली लैंड अप फाइंडिंग योर सेल्फ इन सिचुएशन वेयर यू आर चेजिंग चेजिंग चेजिंग। एंड द सेम काइंड ऑफ लॉजिक अप्लाइज विद मनी एज वेल। अगर आप कॉन्स्टेंटली, अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं आई हैव टू सेव मनी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं यू नो आई हैव टू सेव मनी, आई हैव टू सेव मनी, आई हैव टू सेव मनी, एंड यूर लाइक कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि नहीं मेरे, जब भी मैं, इफ़ यू कीप रीइटरेटिंग दिस रियलिटी कि जब भी मैं पैसे सेव करता हूँ या सेव करती हूँ मेरे हाथ से पैसे चले जाते हैं, मेरे हाथ से, यूर कॉन्स्टेंटली फाइंड योर सेल्फ इन द सेम काइंड ऑफ अ साइकिल अगेन एंड अगेन। और ये वाले जो कई बार गाने होते हैं ना, कभी अलविदा ना कहना, मतलब इन थियोरी दे साउंड वेरी गुड, लेकिन आई मीन आई लाइक टू बिलीव वॉट शी सेड दिस अदर गुरु, एंड आई डोंट लाइक टू बिलीव वॉट दिस सॉन्ग एक्चुअली सेड। क्योंकि कई बार आपको अलविदा बोलना ज़रूरी होता है, कई बार आप अलविदा बोलोगे तभी यूनिवर्स आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। कई बार वी होल्ड ऑन टू दैट रिलेशनशिप विच इज़ सो सो सो सो सो टॉक्सिक जस्ट बिकॉज यू बिन इन दैट रिलेशनशिप फॉर मैनी मैनी मैनी मैनी ईयर्स एंड यू आर सो टाइटली ग्रेस्पिंग ऑन टू इट, और आप कभी अलविदा नहीं बोल रहे हो उसको। लेकिन कई बार अगर आप अलविदा बोल देते हो क्योंकि इतना मुश्किल हो जा रहा है वो सिचुएशन, इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी अ जॉब, इट कुड बी एनी थिंग, यू नो, एंड यू नेवर नो दैट मे बी वो बाधाएं जो आपके आ रही हैं, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू दोज बाधास फॉर अ रीजन, दैट मे बी यू वर सपोज टू चेंज योर डायरेक्शन द होल टाइम, मे बी योर पाथ वॉज समथिंग एल्स एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू ऑल दीज हर्डल्स नॉट जस्ट टू टेस्ट यू बट टू शो यू दैट ब्रो डोंट गो इन दिस वे, गो डोंट गो लेफ्ट, गो राइट, बिकॉज राइट इज द राइट वे टू गो, यू नो व्हाट आई मीन। सो यू नेवर नो एंड आई रियली लाइक टू बिलीव दैट। तो कभी अलविदा ना, मतलब कभी कभी कभार अलविदा तो बोलना जरूरी होता है, बेसिकली इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये गाना सुनते हैं, विल कम बैक एंड देन विल टॉक सम मोर।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
2: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
1: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
2: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panasia.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
8: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
8: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है।

भाई इनकी गाड़ी की तरह अगर आपके भी सपने डूब रहे हैं, इंक्लूडिंग योर करियर एंड यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज एंड यू फील लाइक यू आर स्टक बिहाइंड इन योर वर्क प्लेस, देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू रीच आउट टू प्ले इट फुल. ज्वाइन 4-time TEDx स्पीकर्स एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेज शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ फॉर अ पावरफुल करियर ग्रोथ वर्कशॉप, लर्निंग हाउ टू रीपोजिशन योर वैल्यू, स्ट्रेंथन योर लीडरशिप प्रेजेंस, एक्सेलरेट योर करियर विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. भाई डैलस में हो रहा है ये वर्कशॉप ऑन September 19th. इफ यू वॉन्ट कॉन्फिडेंस एंड यू नो हाउ टू बिहेव एट योर वर्क प्लेस एंड डिमांड फॉर वॉट यू डिजर्व, देन रजिस्टर नाउ एट playitfull.com/Dallas. स्टार्ट बिल्डिंग योर पावरफुल करियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी टूडे.

भाई अगर वो बेवफा है तो उसको क्यों वापस बुला रहे हो? ना जा बेवफा, आई थिंक दैट्स सुपर टॉक्सिक। यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट और बोल जा जा बेवफा, वापस मत आ कभी। क्योंकि पता क्या, बेवफा जो चीटर्स होते हैं ना, वो अपने कार्मा का ग्रेव खुद ही कर रहे होते हैं डिग। विच मीन्स इफ यू हैव चीटेड ऑन समवन और इफ समबडी हैज चीटेड ऑन यू, ट्रस्ट मी, या तो दिस लाइफ और द नेक्स्ट लाइफ दे आर गोइंग टू पे फॉर इट इन सम वे और दी अदर। मे बी दे वॉन्ट गेट डायरेक्टली चीटेड ऑन बाय देयर पार्टनर, मे बी दे गेट चीटेड इन द बिजनेस डील और समवेयर दे आर गोइंग टू गेट सम मेजर धोखा एंड सम अदर बेवफा इज गोइंग टू चीट ऑन देम टू। सो इसीलिए डोंट कॉल द बेवफा, लेट इट गो, डोंट कॉल बैड कार्मा इन टू योर लाइफ। यार लेट, जिसको जाना है जाने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो। भाई जिंदगी जीने से याद आया कि आई नो जिंदगी जीने के लिए अमेरिका में स्पेशली आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है आपके पास और आपने नहीं लिया है एंड यू थिंक इट्स लाइक वे टू एक्सपेंसिव एंड यू कैन नॉट अफोर्ड इट और आपकी कंपनी से भी नहीं मिल रहा है, देन यू कैन चेक आउट दिस कूल लिटल प्लान बाय पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। इट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट, ओनली फॉर 85 बक्स। तो जो मेन मेन चीज़ें होती है, प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत कुछ, वो सब मिलेगा आपको विद इन दिस प्लान। इट्स नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस भी है इसमें, सो नॉट एवरीबडी कैन गो फॉर दिस। गिव देम अ कॉल, मे बी दे कैन हेल्प यू आउट इन केस यू कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ इंश्योरेंस एंड यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, मे बी दे कैन हेल्प यू आउट। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। आई नो अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड क्लिनिक्स हैव दैट एंड दिस इज अ प्रीटी गुड ऑप्शन फॉर दोज पीपल who don't want to pay a hefty amount every month.

गाइज, इट इज़ 9:45 ऑन द क्लॉक. मैं अभी निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में. एंड आई होप यू हैड ए वंडरफुल वेंसडे. कल लास्ट डे है इस हफ्ते का मेरे साथ, आपके साथ. उसके बाद कल हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. आज मैं हाफ वे बोल के नहीं छोड़ना चाह रही हूँ, इसीलिए आई एम नॉट स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू. सो वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट यू नो ब्रेकअप्स एंड वॉट मेक्स, नॉट ब्रेकअप्स एक्चुअली, टुमारो वे गोना टॉक अबाउट वॉट मेक्स that relationship last, what is that thing according to the neuroscientists and everything. We will talk about all this. I hope you had a wonderful rest of your Wednesday. We have made it halfway through the week. Tomorrow is Thursday and then it's Friday. Uske baad weekend. So enjoy the rest of your week. I will see you tomorrow at 7 o'clock as always.

0: जाती नहीं सजना, अब तो नींद भी मुझको आती नहीं।
1: दिल को चुंगी।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: देने खमेरे।
1: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
2: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
1: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
2: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
3: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
4: अजी सुनते हो?
5: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
4: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
6: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
7: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
4: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
7: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
4: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
6: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
10: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.
1: हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
2: कुछ कॉमन होना जरूरी है क्या?

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

0: favorite music on your favorite radio.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: बेटा 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
8: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
7: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
1: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
9: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनशिया।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
4: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, only on Funasia Radio.

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

0: बात नहीं बस गीत. Let's talk more music. Fun Asia Radio.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
5: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
4: Fikar not. We have the perfect solution.
6: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. Sadia.
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
10: तुमसे मिलके दिल का है.
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
11: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

बस आशिकों पे रहे।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: flavor on, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
2: ना नजरों में आ ना मुझको तू देख, मैं तोड़ूंगा दिल तेरा, लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है, बोली में थोड़ा रियान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है, बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ, BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: सर लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप भी बोलेगा।
2: बेटा वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में पड़ चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: देख बेटा बच गया सायर

0: Hi, this is Ranbir Kapoor.
1: And I'm Vani Kapoor, and you're listening to Funasia Radio.
2: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है? जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल?

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: ताके कोई ना तुझे ताके।
1: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: Beta, 95% aaye?
3: Haan, mummy.
2: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
4: मेरा?
2: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Quada.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
0: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi trusted care, urgent care services ke साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को.
8: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
9: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
10: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
11: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
10: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: क्या आपको business खरीदने के लिए loan चाहिए?
13: Call the SBA loan experts.
12: क्या आप franchise शुरू करना चाहते हैं?
13: Call the SBA loan experts.
12: क्या आपको अपने business के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
13: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
12: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
14: Ocho.
15: Hoko.
14: Ocho.
15: Hoko.
14: Ocho.
15: It's Hoko.
16: अरे बस भी करो यार.
15: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
16: नाम Hoko हो या Ocho क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
17: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0 01484 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
14: The Lux Wedding Expo is happening this weekend, and plenty more events happening this weekend as well as the coming weekends. I'll make your social calendar a little bit later in the program. First, let's get started with it. Tareefu super wale ki, jisne duniya banai, chand sitare banai, zameen aasman banai, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya, usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम ऑन दिस लवली थर्सडे मॉर्निंग। इट्स द 17th ऑफ सितंबर टुडे।

0: This part of our show is proudly brought to you by AJ Fintax, offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping, as well as business advisory services for not just individuals, but many businesses here in town also. You can call them and get more information, 469-942-9888, 469-942-9888, or you can visit their website, which is agfintax.com, and get more information, and they can custom make it for you, depending on whatever kind of services you are looking at. agfintax.com.
1: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
2: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
3: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज़ एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे। Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: We need to talk.
5: अब क्या हुआ?
4: Nothing. It's not you.
5: Oh no.
4: It's the distance.
5: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
3: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
8: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
9: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
8: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
9: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
10: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
0: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
5: ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही। और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है। मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा नाम लेती है।

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्लूसिव ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम
1: रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: अरे यार, घर मिल गया।
4: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
5: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
4: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
5: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
2: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
6: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
2: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
6: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
5: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
5: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
8: Bindas, bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
2: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 पीएम टू 7 पीएम फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर।
9: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: एक और लड्डू ले लो।
1: थोड़ी और बिरयानी।
0: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
2: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
3: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
4: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
5: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
3: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
5: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
3: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
4: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
6: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
0: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
9: डील कहाँ?
0: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड द डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
7: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
12: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
13: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
13: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
14: और एंटरटेनमेंट,
13: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
14: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
13: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ।
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ।
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ।
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
17: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sirf India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
18: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
2: Fikar not, we have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
3: ये तारा वो तारा हर तारा.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
5: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
6: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट. पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ अनीशा रेडियो पर.

7 minutes past 10 o'clock and a very good afternoon, good morning to DFW. This is Rumita and you're hanging out with me on Gup Shup Gali, only on 104.9 FM Funisha Radio. You know, aaj subha drive karte hue mujhe ek thought aaya ki agar kal se Google Maps band ho jaye, would you actually know how to get anywhere? Seriously. एक टाइम था जब हम डायरेक्शंस याद रखते थे, वॉलमार्ट के बाद लेफ्ट, फिर गैस स्टेशन के सामने राइट, एंड समहाउ पहुंच भी जाते थे. आज अगर जीपीएस बोल दे ना रीकैलकुलेटिंग, हमारी हार्ट बीट एक्चुअली में रीकैलकुलेट होने लगती है. एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें मतलब बेटर कर दी है. मैप्स, वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन बैंकिंग, फूड डिलीवरी, इवन AI नाउ. बट एवरी अपग्रेड प्रोबेबली केम विथ अ टाइनी डाउनग्रेड टू. मैप गेव अस कन्वीनियंस, मे बी टुक अवे अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. सोशल मीडिया ने हमें सबसे जोर दिया है, मतलब पुराने स्कूल्स के दोस्त अभी पॉपअप हो रहे हैं हमारे टाइम लाइन में, मे बी, बट दे टुक अवे आर सेंस ऑफ कनेक्शन इज वेल. स्ट्रीमिंग गेव अस अनलिमिटेड चॉइस और अब 45 मिनट सिर्फ डिसाइड करने में निकल जाते कि एक्चुअली में हमें देखना क्या है. सो दैट्स टुडेज फर्स्ट गपशप टुडे ऑन गपशप गली विद मी रुमिता. टेक्नोलॉजी ने आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज बेटर की है और एक चीज क्या रुइन कर दी? थिंक अबाउट इट. मैं अपना लिस्ट तब तक तैयार करती हूँ.

16 minutes past 10 o'clock, you're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gapshap Gali with me, Ramita. And this Afghan Jalebi, I mean, Katrina Kaif, actually, aajkal bahut hi zyada news mein hai and for a very different and wrong reason. Because recently, Ganesh Chaturthi celebration mein unki public appearance ke baad, social media par people started actually commenting on her postpartum weight gain and unfortunately, trolling bhi shuru ho gayi. Yaar, fans or even actor Ali Zafar aage aaye or has spoken against this body shaming that this beautiful actress of the Indian film industry, Katrina Kaif, is facing. And this actually connects perfectly with what we are talking about today. Technology ne celebrity aur audience ke beech ki ye jo distance hai, jo almost khatam kar di hai. कितना हार्मफुल है. पहले स्टार्स को हम मूवीज, मैगजीन्स, इंटरव्यूज में देखते थे. आज somebody steps out of their house and within minutes, photos, zoom-ins, comparisons, comments, सब कुछ दुनिया के सामने. एक्सेस डेफिनेटली बढ़ गया है. हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, बट मे बी एक्सेस ऑल्सो मेड अस फील एंटाइटल्ड टू कमेंट ऑन somebody's पर्सनल लाइफ, बॉडी, रिलेशनशिप और क्या नहीं. आई मीन सब कुछ. टेक्नोलॉजी ने हमें एक क्लोजर, यू नो, इट गेव अस अ क्लोजर लुक इन समबडी एल्सेस लाइफ, इन पीपल्स लाइफ, बट डिड इट ऑल्सो मेक अस फॉरगेट वेयर द बाउंड्री एक्चुअली इज़.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
6: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
5: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
6: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
5: ये क्या होता?
6: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
7: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
8: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल. Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
9: Hi, I'm Abhishek Bachchan, and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there, watching our films. Thank you, Funasia Radio, for spreading the word.

यू नो, टेक्नोलॉजी ने एक और इंटरेस्टिंग चीज चेंज कर दी है हमारी पेशेंस लेवल. पहले फोटोज डेवलप होने का वेट करते थे, फेवरेट शो के नेक्स्ट एपिसोड के लिए पूरा हफ्ता वेट करते थे, और किसी को मैसेज भेजा तो इंस्टेंट रिप्लाई की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. आज वाईफाई का स्पीड 10 सेकंड कम लगे तो यार दिमाग मतलब बर्स्ट हो जाता है, क्या ही बोलूं. फूड डिलीवरी 5 मिनट लेट हो तो ट्रैकिंग रिफ्रेश करते, मैसेज पर ब्लू टिक आ गए और रिप्लाई नहीं आया. That becomes very interesting. Convenience definitely made life easier, but did it also make us incredibly impatient? आपको क्या लगता है? Think about it. Break के बाद इसी गपशप को आगे बढ़ाते. You're listening to Gupshup Gali with me, Ramita, only on 104.9 FM, Funny Share Radio.

0: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
1: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउन कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउन कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
4: भूख लगी जोरों की भूख लगी।
5: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है, it's what your mood is actually craving.
7: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
8: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
9: Huzoor, aapko chunna hoga, hum ya ye biryani?
10: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
9: Aakhir kya hai is biryani mein?
10: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
11: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts, and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
8: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
12: Sadia!
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
14: तुमसे मिलके दिल का है।
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
15: इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

रफी साहब ने तो मोहब्बत का दर्द गाया था, लेकिन एडल्ट लाइफ में दर्दे दिल, दर्दे सर, दर्दे कमर, मतलब पूरा पैकेज मिल जाता है। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, दिस इज गपशप गली विद मी रमीता। जोक्स अपार्ट, हेल्थ इज वन थिंग वी रियली शुडंट एक्चुअली कीप पोस्टपोनिंग। एंड अगर आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास पैशन हेल्थ आउट ऑफ नेटवर्क ऑफ योर इंश्योरेंस प्लान है, तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज पैशन हेल्थ डायरेक्ट ऑफर्स अफोर्डेबल प्राइमरी केयर फॉर जस्ट $85 अ मंथ, जहां पे इंक्लूडेड है प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकल मैनेजमेंट एंड टेली हेल्थ एंड मेनी मोर। एंड फॉर दोज पैक्ड वीकडे शेड्यूल, अगर आप फ्रिस्को में रहते हैं, तो यू हैव अ गुड न्यूज, बिकॉज फ्रिस्को लोकेशन इज नाउ ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज टू। वैसे तो पूरे DFW मेट्रोपॉलिटन में पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज स्कैटर्ड एवरीवेयर, चाहे वो फ्रिस्को हो, मकैनी हो, एलन हो, एनीवेयर यू गो यू सी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। बट टू लेट यू नो, फ्रिस्को लोकेशन इज नाउ ओपन ऑन सैटरडेज एंड संडेज। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस .com। एंड टू लेट यू नो, ये जो मैंने बोला ना कि $85 अ मंथ अफोर्डेबल पैशन हेल्थ डायरेक्ट है, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस एंड देर आर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एलिजिबल रेस्ट्रिक्शंस आर देर ऑल्सो विच आर अप्लाइड। सो विजिट पैशन हेल्थ टू नो मोर अबाउट दिस प्लान।

0: यू नो टेक्नोलॉजी ने हमें कन्वीनियंस तो दी, बट आई थिंक हमारा अटेंशन स्पैन भी बहुत चेंज कर दिया. और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, नेहा ने थोड़ी देर पहले कॉल किया था और ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. वो बोल रही है कि पहले कोई भी फेवरेट सॉन्ग आता था तो हम पूरा सुनते थे, लिरिक्स याद करते थे, कैसेट्स रिवाइंड करके सेम लाइन दोबारा सुनते थे. आज इवन जेन्युइनली आज तो अच्छे गाने बन रहे हैं, बट अगेन दैट अटेंशन स्पैन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, 20 सेकेंड में मन बोलता है यार अगला गाना. रील्स, स्वाइप, वीडियो स्किप, सॉन्ग्स फॉरवर्ड, हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया मांग रहा है. सो मे बी टेक्नोलॉजी ने वेटिंग खत्म कर दी है, बट क्या उसके साथ हमारा पेशेंस और अटेंशन भी लूज कर दिया है? थिंक अबाउट इट. दिस इज गपशप गली विथ मी रुमिता, और ये गपशप जारी रहेगी. पहले छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं.
1: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला

0: इस हरकत ने ही बरकत दी है क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या गंडा लेकर जाएगा? अपना टाइम।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
6: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
5: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
6: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
16: इतना सब और प्राइस?
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
17: मैं ही तो।
14: एक और लड्डू ले लो।
18: थोड़ी और बिरयानी?
14: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
19: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
3: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
15: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
2: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

अगर टेक्नोलॉजी का सही बिल्कुल कमाल का यूसेज हुआ है तो इस सॉन्ग का ये जो रेंडिशन है उस पे हुआ है, द टेकन फ्रॉम द मूवी मिर्जापुर। वाह क्या गाना है ये। यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो, दिस इज गपशप गली विद मी रमिता। और यू नो टेक्नोलॉजी का एक कंट्राडिक्शन है जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हम शायद पहले कभी इतने कनेक्टेड नहीं थे। मैं दुनिया के किसी भी कोने में किसी को 2 सेकंड्स में वीडियो कॉल कर सकती हूँ। मेरा जो स्कूल फ्रेंड है वो ब्रेकफास्ट में क्या खा रहा है वो भी मुझे पता है। और जिस इंसान से मैंने 10 साल से बात नहीं की वो अभी ग्रीस में अगर वेकेशन भी मना रहा है ना तो वो भी मुझे पता है। बट समटाइम्स एक ही डिनर टेबल पर बैठे 4 लोग 4 अलग अलग स्क्रीन्स देख रहे होते। फोन में 700 कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन अगर लाइफ में जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो एक्चुअली आपके पास कितने लोग हैं कॉल करके उस प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए? मे बी 4, मे बी 5। सो टेक्नोलॉजी ने हमारी कनेक्शन इम्प्रूव की है? एब्सोल्युटली की है, मैं तो मानती हूँ डेफिनेटली हम सबके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। बट क्या उसने हमारी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव किया है? आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर अबाउट इट। अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स या फैमिली के साथ कहीं पे अगर डिनर पर जाए तो सबके फोन्स 1 घंटे के लिए टेबल के बीच में रख दो, ना ही कोई चेकिंग, ना पिक्चर्स, ना मैसेजेस। अगर आप कर पाओगे तो मुझे बताना। Stay till then, stay tuned and keep listening to 104.9 FM Funisha Radio.

अटेंशन स्पैन, पेशेंस, कन्वर्सेशंस, प्राइवेसी, इन्फॉर्मेशन, सब कुछ लिटरली फिंगर टिप्स पर है. बट इसी इजी एक्सेस ने एक और इंटरेस्टिंग चीज क्रिएट कर दी है. यू नो, अब इन्फॉर्मेशन सबके पास है और समहाउ एक्सपर्टीज भी सबके पास आ गई है. एक रील देखी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, दो पॉडकास्ट सुन लिए रिलेशनशिप कोच, और तीन फिनेंस के वीडियोस अगर देख लिए तो ब्रो, लेट मी टेल यू वेयर टू इन्वेस्ट. सो एक गाने एक ब्रेक के बाद गपशप में थोड़ी और स्पाइस होने वाली है. व्हाई इज एवरीवन सडनली एन एक्सपर्ट? यू नो, इन्फॉर्मेशन और एक्चुअल नॉलेज के बीच का जो डिफरेंस है और रहना भी चाहिए, वो कहीं पे डिसअपियर हो गया. थिंक अबाउट इट. छोटा सा ब्रेक, एज आई टोल्ड यू, एक गाना और छोटा सा ब्रेक, एंड आई विल बी राइट बैक. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो. दिस इज गपशप गली विथ मी रुमिता.

0: सियासी मुजरिम हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, हमें किताबें मिलनी चाहिए।
1: उनकी भूख हड़ताल पूरे 114 दिन तक चली। 114 दिन। दुनिया के इतिहास में कोई भी क्रांतिकारी इतने दिन तक ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में

8 minutes past 11 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funny Shar Radio. This is Gup Shup Gully with me, Rimita. And that brings to my last hour of my show today. Aur socha ki is ghante kuch different discuss karte hai. Gup Shup थोड़ा दूसरी तरफ घुमाते हैं. यू नो, आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत ही एक ब्रांड न्यू क्वालिफिकेशन इन्वेंट किया है. इट्स कॉल्ड आई वॉच्ड 3 reels. एक रील अबाउट प्रोटीन, यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट. एक रील, दो रील अबाउट अटैचमेंट स्टाइल्स, देन आप रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हो. और अगर एक पूरा इन्वेस्टिंग के टॉपिक पे आपने पॉडकास्ट देख लिया तो आप खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर समझने लगते हो. और 3 videos अबाउट AI, टेक एक्सपर्ट, और सबसे फेवरेट जो मेरी है, आई डिड माई ओन रिसर्च. हेलो, रिसर्च मतलब क्या है? गूगल का पहला 3 results. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल एंड दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव. But access to information and expertise are not the same thing. So today's second Gupshup question is, ऐसी कौन सी चीज है जो आपने लोगों पे notice किया है, और वो भी confidently notice किया है. लोग एक दूसरे को advice देना जब start करते हैं, when they clearly have no idea. Like parenting, relationship, fitness, money, career. बताओ बताओ, कौन सी ऐसी expert advice आप सुनते हो जो खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड एडवाइजर्स है या फिर एक्सपर्ट्स है. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. वी वांट द गपशप, नॉट द लॉसूट्स.

You're listening to Gup Shup Gully with me, Ramita, only on 104.9 FM. और अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट द ट्रेंड के इंटरनेट पर सब ही एक्सपर्ट है और इंटरनेट से सीख के सब और भी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज इम्पॉर्टेंट एज योर करियर, समटाइम्स द राइट गाइडेंस फ्रॉम पीपल हु एक्चुअली हैव द एक्सपीरियंस कैन मेक a real difference. And I'm talking about 4-time TEDx speakers and award-winning career coaches Shilpa and Kapil Kulshrestha, who are coming to Dallas. So, Dallas walo, agar aap apne career mein atak gaye ho and wondering whether AI and all these rapid workplace changes are leaving you behind, to ye वर्कशॉप आपके लिए है, क्योंकि एज आई मेंशन्ड करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ आर ब्रिंगिंग द करियर ग्रोथ वर्कशॉप टू डैलस ऑन सितंबर 19th. इट्स डिजाइन टू हेल्प यू रीपोजिशन योर वैल्यू, आपके लीडरशिप स्किल्स को और भी ज्यादा मजबूत करने और टू मूव योर करियर फॉरवर्ड विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. यू हैव टू अटेंड दिस वर्कशॉप. सो टू रजिस्टर to register in this workshop, you need to visit this website, playitful.com/Dallas, that is playitful.com/Dallas, and start building your career transformation story. Bane rahi hamare saath, kyunki back to back do beautiful gaane ke baad, hum milenge with more and more Gup Shup, only on 104.9 FM, Fanisha Radio.

सच का यार, आप चैन कहाँ है, स्पेशली जब आप कुछ भी खाने जाओ. यू नो, खाने के साथ बहुत ही एक फनी चीज होती है, आप जो भी खा रहे हो किसी ना किसी के पास उसके बारे में ओपिनियन जरूर होगा. प्लेट में राइस लिया, इतने कार्ब्स, डिजर्ट लिया, शुगर देखिए, सैलड लिया, बस इतना ही खाओगे? मतलब खाइए तो प्रॉब्लम, ना खाइए तो भी प्रॉब्लम. हेल्थ और न्यूट्रिशन की जेन्युइन एडवाइस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट हर मील को मील को कैलकुलेशन बना देना भी जरूरत नहीं है. समटाइम्स फूड इज ऑल्सो अबाउट टेस्ट, कंपनी एंड सिंपली एंजॉइंग योरसेल्फ. और आज अगर डिनर में बटर चिकन, बिरयानी, पनीर टिक्का या दाल मखनी का मूड है, then straight away head to Tandoori Flame in Garland, because Monday through Thursday 5 se 8 baje tak it is the flame hour in Tandoori Flame, where you can order any two entrees and receive one complimentary appetizer. So adhik jankari ke liye you can visit their website, which is tandooriflametx.com, and khaake aake batana kaisa laga aapko butter chicken.

100 अंधेरों में भी रोशन हो, उस हकीकत की तलाश है। तेरी दहलीज पे छोड़ाए उस मोहब्बत की तलाश है। झुकने की इबादत को तो समझे जहां वालों, कटने पे जो हासिल हो उस जन्नत की तलाश है।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
7: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
10: हाँ.
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ.
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ.
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking, लंच में क्या है?
13: Fear not, we have the perfect solution.
14: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
15: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
16: लैपटॉप में.
15: इन्वेस्टमेंट,
16: गूगल ड्राइव,
15: इंश्योरेंस, पासवर्ड्स?
16: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
15: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
14: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
17: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
14: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
18: We need to talk.
19: अब क्या हुआ?
18: Nothing. It's not you.
19: Oh no.
18: It's the distance.
19: Distance? We live 10 minutes apart.
18: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
14: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Sadia.
20: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
21: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
22: तुमसे मिलके दिल का है.
21: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

It's past 12 o'clock. You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. Very good afternoon to all the listeners. This is Gupshup Gali with me, Ramita. अच्छा जी, बहुत हो गई इंटरनेट एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और फूड एक्सपर्ट्स की बात. अब देखते हैं DFW में बॉलीवुड एक्सपर्ट्स कितने हैं. Because it's time for that guess the movie in 3 clues. मूवी गेस करनी है और एक लकी विनर को मिलेगा a $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम Fun Pizza Kitchen, which is located in Frisco. So, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, because आ रहा है आपके तीनों clues. Clue number one. इस movie की कहानी एक ऐसे young man के around घूमती है, जिसका आग के साथ एक mysterious connection है. Clue number two. फिल्म में एक secret world of powerful ancient अस्त्रज है, एंड वन ऑफ द अल्टीमेट अस्त्र जिसके अराउंड पूरी पिक्चर है. एंड क्लू नंबर थ्री, विच इज द इजिएस्ट, और इसके बाद अगर गेट्स नहीं किया तो यार हिंदी मूवीज देखना छोड़ दो. हीरो का नाम शिवा है, हीरोइन का नाम ईशा है. बस अब तो पक्का आंसर आ ही गया होगा, एंड यस आ गया है क्योंकि मेरे फोन लाइंस ब्लिंक करने लगे हैं. सो जो अभी भी नंबर ढूंढ रहे हो उनके लिए बता दूं, 972-235-5555 इज द स्टूडियो नंबर. सही जवाब देने वाले को मिलेगा $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन लोकेटेड इन फ्रिस्को. देखते हैं असली बॉलीवुड एक्सपर्ट कौन है.

You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. Yes, the movie name is Milan Thak. मैं विनर का नाम बोल रही थी. द मूवी नेम इज ब्रह्मास्त्र और जो विनर मुझे मिल गया है उनका नाम है मिलांग ठाकर. कंग्रेचुलेशंस. जी हाँ, इन तीनों क्लू में से आपने प्रूव कर दिया कि आप ही है बॉलीवुड एक्सपर्ट. वैसे इससे ज्यादा इजी ना ही क्लूज हो सकता है, ना ही कोई मूवी का नाम, ना ही कोई गेम. और इसीलिए तो फनीशिया रेडियो इज द फन इन योर लाइफ, द फन पार्ट इन योर लाइफ. एंड गेस व्हाट, आप जीत गए हैं मिलंग ठाकर, आप जीत गए हैं $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. चलिए, ब्रह्मास्त्र की कितनी ही बात हो रही है, चर्चा हो रही है, देन व्हाई नॉट लिसन टू दिस ट्रैक फ्रॉम देयर मूवी ब्रह्मास्त्र.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Gup Shup Gully with me, Rabita. And Gup Shup chal rahi hai about experts giving unsolicited advices aur ek uncomfortable thought aapke liye pesh karti hu. Sometimes we actually don't need advices. Hamein sirf confirmation chahiye hoti hai. Aapko कॉफ़ी पसंद है, लोग आपको बोलेंगे हाँ हाँ कॉफ़ी पियो, आपको वीडियोस भी दिखेंगे कि आप कौन से कॉफ़ी पीने से आपका वेट लॉस होगा या आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा. आपको कॉफ़ी टेरिबल लगता है, डोंट वरी, देयर इज अनदर वीडियो वेटिंग फॉर यू. एक बंदा बोलेगा यार 5 बजे उठो, अनादर बोलेगा कि भाई कुछ भी करो 8 घंटे सो जाओ. कोई कहेगा कार्ब्स आपके लिए ईविल है, कोई कहेगा कार्ब्स खाओ दिमाग खुलेगा, एंड बाय द एंड यू आर ईटिंग टोस्ट एट नून कंप्लीटली कंफ्यूज्ड. और एल्गोरिदम मेक दिस इवन मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज वंस यू एंगेज विथ वन टाइप ऑफ कॉन्टेंट आपको वही चीजें सामने आने लगती है. सो आस्क योर सेल्फ, वेन वॉज द लास्ट टाइम यू जेन्युइनली चेंज्ड योर ओपिनियन बिकॉज यू सम लर्न समथिंग न्यू ऑन द सोशल मीडिया. वैसे मेरी एक कॉलर है जो रोज मुझे कॉल करती है, रैंडमली वो टॉपिक स्टार्ट करती है रिलेटेड टू द सॉन्ग आई एम प्लेइंग, और उसके बारे में 2-3 मिनट बात करके अपना नाम बिना बताए वो रख देती है. बट द कन्वर्सेशन दैट वी हैव इज क्वाइट एंजॉयबल. बट आज उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कही है कि लोग कुछ भी एक्सपर्ट दे यार, किसी ने कहा है दुनिया 5 साल में खत्म होने वाली, एंड दैट इज व्हाट शी इज सेइंग. आई एम नॉट सेइंग या कोई ऐसी एक्सपर्ट होगी या रील देख लिया होगा उन्होंने. तो बेसिक समरी ऑफ हर इंटेंट ऑफ लेटिंग मी नो इज कुछ भी हो जाए एंजॉय करो लाइफ.

0: कभी आना तुम मेरी गली,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: आप, जी हाँ, आप हो हमारे गली में ही। दिस इज गपशप गली विथ मी रुमिता ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो। और यू नो, एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत सबसे ज्यादा तब समझ आती है जब डिसीशंस एक्चुअली आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर ओपिनियंस फ्री में हजार मिल जाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू रनिंग अ बिजनेस यू वांट सॉल्यूशन दैट एक्चुअली मेक सेंस फॉर योर नीड्स। और इसीलिए अगर आप टेक्सस में बिजनेस ओनर हो एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन, देन तारा कमर्शियल एनर्जी हैज बीन सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002, जहां पे आपको मिलेगा कंपटीटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स। कॉल करें 844-428-2808, दैट्स 844-428-2808, और यू कैन विजिट taraenergy.com today।

और इसी के साथ आज की गपशप गली को करते हैं रैप। एक्सपर्ट्स तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन ओपिनियंस को थोड़ा फिल्टर जरूर करना। दिस इज रुमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज गपशप गली। कल फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक और नए गपशप के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन।

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
5: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
4: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
5: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
6: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
8: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
9: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
10: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
9: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
10: और एंटरटेनमेंट,
9: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
10: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
9: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
11: बेटा, 95% आए?
12: हाँ मम्मी।
11: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
10: मेरा?
11: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
10: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू। And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
14: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: 9FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: हेलो, गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार डैलस. आपकी होस्ट आयुषी आ गई है यहाँ पर फिर से स्टूडियो में आपके साथ कुछ सुहाने सुहाने गाने और प्यारी प्यारी बातें लेकर के. आप सबका स्वागत करते हैं. थर्सडे है, हफ्ता ख़त्म हो रहा है. बहुत खुशी महसूस हो रही होगी, राइट? मुझे भी होती है जैसे ही वीकेंड आता है, पर फिलहाल ऐसे लग रहा है कि वीकडे से ज़्यादा काम वीकेंड पे है. बिकॉज ऑफ ऑल द फेस्टिविटीज अराउंड, ये हाल है कि वीकेंड ज़्यादा बिजी है वीकडेज से. क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है?

Your dream home may be closer than you think. Since 1998, Dream Home Mortgage has helped families nationwide with personalized mortgage solutions for buying or refinancing. आप इनको कॉल कर सकते हैं 972-245-5626 पर या फिर विजिट कर सकते हैं dreamhomemortgages.com. dreamhomemortgage.com. I'm sorry, it's dreamhomemortgage.com. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं. और आज ना ऐसे मैं बैठी हुई थी और मुझे याद आ रहा था कि पहले हमारे यहाँ टॉप 10 गाने हुआ करते थे जो MTV पे आते थे और वो रिवर्स ऑर्डर में चला करते थे. तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं भी आपको इंडिया के बॉलीवुड के टॉप 10 ट्रेंडिंग सॉन्ग्स लेकर के आऊं. एंड यू वोंट बिलीव नंबर 1-2 पे कौन सा गाना है. इट्स नॉट अ बॉलीवुड सॉन्ग, उस पर उसकी तरफ हम जाएंगे. लेकिन फिलहाल आपको सुनाते हैं जो नंबर 10 पे गाना है वो.

सो दैट वाज आवारापन 2. तो फिर आओ 2.0 वर्जन इमरान हाशमी और दिशा पतानी की ये फिल्म है और आज हम प्ले कर रहे हैं कुछ टॉप 10 गाने और हम सोच रहे हैं कि अगर हम अगले हफ्ते भी आए तो एवरी थर्सडे हम आपके लिए लेके आएंगे द टॉप 10 सॉन्ग्स विच आर ट्रेंडिंग ऑन यू नो बॉलीवुड के मूवीज के या फिर जो भी गाने हैं वो. सो दिस वॉज द नंबर 10 सॉन्ग आवारापन का और अगला गाना आपके लिए लेकर के आ रहे हैं. बड़ा ही ट्रेंडिंग है यार आजकल, तो सब कुछ रील से ट्रेंडिंग हो रहा है. पर एक जमान था जब हम लोग MTV पे टॉप 10 गाने देखा करते थे और एवरी फ्राइडे आई थिंक इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, कॉल मी एंड टेल मी दैट फ्राइडेज को नए गाने भी रिलीज हुआ करते थे और उसी पे इंतजार करते थे. चित्रहार का एक ज़माना था, फिर हमारा MTV का ज़माना आया और उसके बाद से अभी हम लोग तो बस ऑनलाइन जाके यू नो स्पॉटिफाई पे और ऐसे सावन पे गाने सुन लेते हैं या फिर यूट्यूब पे देख लेते हैं. बट पहले वेट किया करते थे TV पे इन गानों के आने का. अगले गाने की तरफ लेकर के चलते हैं लेकिन उसके बाद उसके पहले बता दें कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज proudly brought to you by AG FinTechs, offering trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping and business advisory services for individuals and businesses. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com today. तो ये दूसरा गाना बहुत ज्यादा ही ट्रेंडिंग चल रहा है, मूवी भी रिलीज हो गई है.

कहाँ मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

तो ये गाना था नंबर 9 पर, और द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी हनुमान अंश। आज हम टॉप 10 गाने प्ले कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। 9वें नंबर पे था ये गाना। अगले गाने की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, कुछ ज़रूरी जानकारी दे दें आपको कि अगर आप H1B पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं, या फिर किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं, एंड इफ़ यू प्लानिंग योर पाथ टू द US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू। अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम, you can email them at info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com. The law offices of Seema Mehta. तो चलिए अगले गाने की तरफ जल्दी से लेकर के चलते हैं आपको।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal, or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
10: कैसे?
11: पेज 3 ईटरी?
10: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
11: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, classic bowls and the food crafted to suit every craving, every appetite.
10: Matlab great food, great drinks and great company, yani ki main.
12: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
13: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
14: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
15: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
16: हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 एफएम पे और आपको हम कुछ ट्रेंडिंग बॉलीवुड सॉन्ग सुना रहे हैं, टॉप 10 जो इस हफ्ते के हैं. और एक गाना है और एक फिल्म है जिसने अभी तक लिस्ट को छोड़ा नहीं है, वो है सैयारा. और हर दिन मुझे एक न एक फरमाइश आती ही है इस फिल्म के गाने की. सो दिस टाइम विदाउट एनी रिक्वेस्ट हमारे लिस्ट पे 7 नंबर का गाना है ये जो कि चल रहा है अभी स्टूडियो से आपके लिए.

0: PMJ Jewels is now in Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Explore beautiful gold, diamond and bridal collection for every celebration. Visit PMJ Jewels on Main Street, Frisco. Jewelry that tells your story. तो फ्रिस्को पे इनका लोकेशन है, मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में आप जा सकते हैं पीएमजे ज्वेल्स. फिलहाल टॉप 10 गाने चल रहे हैं और भाई इस टॉप 10 गानों में ना 3 गाने जो है वो सैयारा के ही हैं. एंड दिस मूवी हैज़ नॉट लेफ्ट द चार्ट फॉर अ वाइल. बहुत समय से इसके गाने सबको ऐसे ही पसंद आ रहे हैं.
1: टाइम नहीं लगता, पहले एंड ऑफ स्टोरी.

तो भाई हम सुन रहे हैं आज टॉप बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑफ द वीक और सैयारा का ये गाना बैक टू बैक सैयारा के तीन गाने अभी भी लिस्ट को टॉप कर रहे हैं। और आज मुझे एक रेगुलर कॉलर है, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज अ बिग फैन ऑफ सैयारा सॉन्ग्स एंड आई होप ही इज लविंग इट टुडे, बिकॉज सारे गाने सैयारा के ही चल रहे हैं फिलहाल।

0: सैयारा का टाइटल सॉन्ग सैयारा का टाइटल सॉन्ग आहान पांडे एंड अनीत पड्डा की ये फिल्म है, और हमने सोचा था कि आहान और अनीत पड्डा हमें कहीं दिखेंगे, पर अभी तक किसी और फिल्म में, किसी और शो में इनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। एनीवेज, अगले गाने की तरफ चलते हैं। टॉप 10 सॉन्ग ऑफ द ऑफ बॉलीवुड चल रहा है अभी फिलहाल इस सेगमेंट में मेरे साथ। अगला गाना है फिल्म 21 से।
1: मैं सोचता एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर
0: अगस्त्य नंदा एंड सिमरन भाटिया।

0: बेटा मुकेश ये अभी 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: So here was this beautiful track from 21, Sitare Hai Gaane Ka Naam, and Agastya Nanda, Simar Bhatia, are in this film. और ये गाने आपके लिए लेकर के आ रही हूँ बॉलीवुड के टॉप 10 सॉन्ग्स जो कि इस हफ्ते के हैं। अगले गाने की तरफ चलते हैं एंड दिस इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी, दिस इज अ कोक स्टूडियो नंबर जो कि गाया है अनुभव जैन ने। सो हियर्स दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, एंजॉय द म्यूजिक।
2: Subscribe now.

0: ब्यूटिफुल ट्रैक अनुव जैन की आवाज़ में, कोक स्टूडियो का ये नंबर था और ये गाना बहुत ही ट्रेंडिंग है एंड बिलीव मी मैंने खुद ये गाना पहली बार पूरा सुना है। इट्स अ लवली सॉन्ग। एक्चुअली मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ कि सोशल मीडिया ने ना हमारा स्पैन, अटेंशन स्पैन इतना कम कर दिया है किसी भी चीज़ को लेकर के, दैट 30 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं। आई नो देयर वाज टाइम जब पूरा पूरे गाने के बोल जुबान पे हुआ करते थे। अभी जब ये लास्ट में गाना पहुंचा, दैट पार्ट इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया एंड उतने ही बोल मुझे इसके याद हैं एंड इट्स समथिंग दैट इज कंसर्निंग, वरिंग, और मुझे ही लगता है बार बार कि हम कर क्या रहे हैं। बट इतना ज़्यादा ये हमारी लाइफ में हर तरह से घुस गया है, चाहे एड्स देखने हों, चाहे मूवी के ट्रेलर्स देखने हों, सब कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है एंड इट्स एक्चुअली किलिंग आवर अटेंशन स्पैन, इट्स किलिंग अ लॉट ऑफ आर, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है यार ये। दिस इज व्हाट आई कैन से। मतलब सोचने की शक्ति भी चैट जीपीटी और जेमिनी के पास चली गई है। पहले सिर्फ गूगल कर करके दिमाग खराब हो गया था, अब उसी से सवाल और जवाब मांग लेते हैं, लेटर्स लिखवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट वर्किंग गाइज। एनीवेज, टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी वापस आते हैं और गानों का सिलसिला चलता रहेगा। फनेशिया 104.9 FM।
1: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहां?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
3: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहां चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
3: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
1: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
5: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
6: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
5: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
6: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: Bindas, bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
5: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मारविन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
0: हेलो वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनिशा 104.9 FM पे और मैं आपके साथ होती हूँ मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 12:30 टू 2:30 और आपको एंटरटेन करती हूँ कुछ प्यारे और खूबसूरत गानों के साथ और कुछ मेरी चटर पटर बातों के साथ। ऐसे ही कुछ कुछ चलता रहता है यहाँ फनिशा के स्टूडियो से। तो अगर अभी फिलहाल तो हमारा टॉप 10 चार्ट चल रहा है ऑफ द वीक और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने हैं एंड कुछ गाने तो मैंने खुद ही पहली बार पूरे सुने हैं। गाने सारे सुने हैं इसमें से मैंने, बट हाँ पूरे आज सुन रही हूँ आप लोगों के साथ। और इस सेगमेंट के बाद हम आपकी फरमाइश लेंगे तो फोन लाइंस अभी भी ओपन है, आप कॉल कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आप अपनी पसंद की फरमाइश दे सकते हैं। हम जा रहे हैं अगले गाने की तरफ जो कि टॉप 10 गानों में से दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, दूसरे नंबर पे गाना है फिल्म धुरंधर का। धुरंधर ने अभी तक अपना जो क्रेज है वो लोगों में बना के रखा हुआ है और इसके गाने आज भी सब लोग गुनगुना रहे हैं, थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। एंड हियर इज दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी धुरंधर।

धुरंधर का ये ट्रैक ये हमारे टॉप 10 गानों में से है नंबर 2 पे, और आपको लेके चल रहे हैं अगले गाने की तरफ जो कि इस हफ्ते ट्रेंडिंग है, नंबर 1 पर है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। लेके एक जरूरी जानकारी लेके आई हूँ जो पहले आपको दे दूँ। फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी। Now growing with a brand new name and a second Frisco location, introducing Lenoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, X-ray, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan Med Spa services, and all under one roof. Open 7 days a week, from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime, no appointment needed. तो चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं, जल्दी से लेके चले आपको नंबर 1 गाने की तरफ। ऐसे पहले भी तो था ना, क्यूरियोसिटी बनाते रहते थे लोग, बोलते रहते थे पहले वीजेज फिर आरजेज और उसके पहले बहुत सारे एड्स और बकवास, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जल्दी से आपको लेके चलते हैं नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द वीक की तरफ। ये है आवारापन 2 से इमरान हाशमी और दिशा पटानी है इस फिल्म में।

सो दैट वॉज द फाइनल नंबर हमारे सेगमेंट का. जी हाँ, हम कर रहे थे टॉप 10 गाने ऑफ द वीक और नंबर एक पे चल रहा था तेरा मेरा रिश्ता फ्रॉम अवारा पंटू इमरान हाशमी और दिशा पटानी की फिल्म है ये. उम्मीद करती हूँ सेगमेंट पसंद आया होगा. हर थर्सडे कोशिश करूंगी आपके लिए लाने का टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ताकि हम सुने कुछ नए, कुछ अच्छे और पूरे पूरे गाने. क्योंकि भाई सोशल मीडिया तो ऐसा सवार है मेरे सर पे कि हम कोई भी गाना पूरा सुन ही नहीं रहे आजकल. जो वहाँ से वायरल होता है ना, उसको जा करके ढूंढते हैं और उसमें भी सब ने कोई कोई ही गाना ढूंढ पाते हैं. चलिए एनीवे, शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले गाने की तरफ चलते हैं. और उसके पहले आपको बता दें कि आपके पास एक मौका है $10 ऑफ जीतने का ऑन योर डाइन इन बिल ऑफ 50 और मोर. पर कैसे, कहाँ, कब? तो आप जीत सकते हैं ये गिव अवे चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से. यू कैन एंजॉय द स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विथ एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच. लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, विजिट chandigarhbites.com फॉर डिटेल्स. तो चलिए जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल करके रखिए, मतलब पहले गाना सुन लीजिए. अब इतने सारे प्यारे और अच्छे गानों के बाद आपको लेकर ही चल रहे हैं कुछ तड़कते भड़कते नंबर्स की तरफ, मतलब एकदम ठुमका वाले नंबर्स लगा रही हूँ मैं, क्योंकि भाई वीकेंड आ रहा है, खुशियाँ मनानी ज़रूरी हैं. तो फ़ोन उठाइए और मुझे बताइए कौन सी फिल्म का है ये अगला गाना और लेकर के जाइए ये $10 ऑफ का गिव अवे चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से.

ओहो, तो हीरो नंबर वन का था ये गाना और हमें मिल गया है सही जवाब। पहले तो जोरदार तालियां हो जाएं जुनैद खोजा जी के लिए। तो भाई आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ। बहुत बहुत बधाई। जाइए और बढ़िया खाना एंजॉय करिए। इट्स अ गुड प्लेस, इट हैज़ गुड फूड। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है इसलिए आपको सलाह दे रही हूँ। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब इन तड़कते भड़कते जो नंबर्स मैंने ढूंढे हैं इस पर थोड़ा ठुमका लगाते हैं। वीकेंड आ रहा है, एंजॉय करते हैं। तो गोविंदा के नंबर्स से अच्छा क्या होगा ठुमका लगाने के लिए? उनके ही गानों पे लगाए जाए थोड़े ठुमके। गाड़ी में बैठे बैठे आप ठुमक लीजिए, स्टूडियो में खड़े खड़े हम ठुमक लेते हैं। अगला गाना लेकर के आ रही हूँ गोविंदा की ही मूवी से।

0: तो वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और आपको याद दिला दूं कि मैं स्टूडियो में फरमाइशें ले रही हूं आपकी, तो अगले आधे घंटे हम सिर्फ और सिर्फ आपके पसंद के गाने चलाएंगे, तो स्टूडियो में कॉल करना मत भूलिए। स्टूडियो का नंबर है 9722355555 और आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पर। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए मजेदार गाने और करते रहिए कॉल। आप मुझे अब मिलेंगे हर मंडे से लेके थर्सडे तक, फ्राइडे तक, सॉरी मंडे से फ्राइडे तक एवरी डे हम मिलेंगे। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे और जल्दी से वापस आते हैं, फिर सुनाते हैं आपको अच्छे अच्छे गाने।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
0: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
6: डील कहाँ?
0: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
6: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
10: वेट, इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं हीरो।
12: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
15: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
16: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
17: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
16: नहीं।
17: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
16: नहीं।
17: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं।
17: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
18: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
19: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
20: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
0: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao kahani mein twist.
21: Chicken tikka purani mohabbat, but burrata chicken tikka new love.
0: And pistachio lamb chops,
21: full on flavor ka fusion.
22: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
23: Sadia.
24: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
25: वही आवाज
14: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
2: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: वेलकम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। और हमारे अगले सेगमेंट में हम कुछ रिक्वेस्ट लेने वाले हैं और पहली रिक्वेस्ट आ भी चुकी है, दूसरी भी आ चुकी है, तीसरी भी आ चुकी है। मेरे पास है सिर्फ आधे घंटे, तो प्लीज़ जल्दी से कॉल करिए और फरमाइश दीजिए 972-235-5555 पे। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फन एशिया 104.9 FM पे। खूबसूरत और प्यारे गानों का सिलसिला यहाँ चलते रहता है। फिलहाल इस गाने की फरमाइश आई है सोहेल की तरफ से मरियम को।

That was a beautiful track from Raid 2. और आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, आपको लेकर के चलते हैं. ये जो फरमाइश आई है कोक स्टूडियो नंबर, लेकिन उसके पहले आपको बता दें दैट यू हैव टू गेट रेडी फॉर अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. जी हाँ, सोनू निगम आ रहे हैं डैलस में, लाइव इन कॉन्सर्ट है, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन. Saturday, September 26th, 8:30 PM at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. अगर टिकट नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि आपके फेवरेट गाने होंगे, एक आइकॉनिक आवाज जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो होगी, एंड दिस विल बी ऑल लाइव. टिकट अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 855-360-SHOWS. आई रिपीट, इट्स 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन, सोनू निगम लाइव, एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर इज फनेशिया नेटवर्क, एंड टेकिंग यू टूवर्ड्स अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर फ्रॉम कोक स्टूडियो.

Here was this beautiful track from Coke Studio, Rekha Bhardwaj और उत्पल उदित की आवाज में था ये गाना, और ये एक भोजपुरी गाना है यार। रीजनल गानों को कोक स्टूडियो जिस तरह से प्लेटफॉर्म दे के खूबसूरत बना रहा है ना, उसका क्या ही कहना है। एंड रेखा भारद्वाज हरसेल्फ इज सिंगिंग इन भोजपुरी। और भाई आप लोगों को पता लग गया कि हम बिहार से हैं, कहीं कहीं से रीजनल गाने ढूंढ लेते हैं मेरे यहाँ वाले के लोग, बहुत बहुत बहुत बहुत तेज़ है। मैंने बोला मैं रीजनल नहीं बजाऊंगी, तो कोक स्टूडियो का नंबर है तो हमने कहा चलो यार प्ले कर देते हैं। ब्यूटिफुल ट्रैक एंड यस, कोक स्टूडियो इज गिविंग सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू भोजपुरी म्यूजिक, to all the regional songs. They're so beautiful done, beautifully done, and we are enjoying it. और अच्छा लगता है क्योंकि यू नो भोजपुरी गानों को बड़ा ही बदनाम किया हुआ है कि मतलब सारे गाने ऐसे बिल्कुल ही छोरे टाइप होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लुक एट द म्यूजिक, लुक एट द वॉइस, लुक एट द वर्डिंग्स, इतना प्यारा मतलब और इतना प्यारा गाना। अगले गाने की तरफ चलते हैं। ये एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, एंड दिस इज ऑल्सो बैंड सनम के नाम से है ये बैंड जिसका गाना है। आज सब लोग बड़े प्यारे और अनोखे गाने ढूंढ के ला रहे हो यार, आई एम सो हैप्पी। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक, सनम है इस बैंड का नाम।

That was a beautiful track and अगले गाने की भी फरमाइश आ गई है. बहुत ही प्यारे खूबसूरत अनोखे गाने लाए. देखते हैं कि इस सेगमेंट में कौन सबसे प्यारा सबसे खूबसूरत गाना लेकर के आता है. एक्चुअली सारे गाने बहुत अच्छे हैं पर अलग अलग ढूंढ ढूंढ के ट्रैक्स निकल रहे हैं. कोई को स्टूडियो का नंबर है, कोई सनम का नंबर है, या यू नो सनम बैंड का गाना है. आई मीन सनम का नंबर नहीं है तो गलत ना समझ लें आप मुझे, बस क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ. तो ऐसे ही प्यारे गाने आप फरमाइश कर सकते हैं. कॉल करिए स्टूडियो के नंबर पर जो कि है 9722355555. आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट आयुषी को फनेशिया 104.9 FM पे. 2:30 बजे तक हूँ आपके साथ, आपके पसंद के गाने प्ले करूंगी. एक और ही बहुत ही प्यारा सा नंबर जो कि बहुत ही ब्यूटिफुली रिक्रिएट किया हुआ है.

So here was this beautiful track, and this is a recreated version. Nadia Kepar का ये गाना है. इसको गाया है वर्षा सिंह धनोआ ने, और जो ओरिजिनल गाना था वो रविंद्र जैन जी ने गाया था. एंड सिंगर्स थे जसपाल सिंह जी और हेमलता जी. एंड वर्षा सिंह धनोआ क्रिएट रिक्रिएटेड दिस सॉन्ग एंड गेव अ ट्रिब्यूट टू दीज लेजेंडरी सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स. बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है. गाना खुद में ही खूबसूरत है, पर जिस हिसाब से रिक्रिएट किया है और भी प्यारा लग रहा है. वन ऑफ यू नो माय फेवरेट, एक टाइम पे बहुत फेवरेट था, मैं रिपीट पे सुन रही थी ये गाना, इतना प्यारा लग रहा था मुझे और अभी भी मुझे बहुत पसंद है. चलिए अब वक्त हो रहा है आप लोगों से विदा लेने का. आखिरी गाना जो मैं लगा के जा रही हूँ वो आपकी ही फरमाइश का है, शिवानी की कॉल पे ये गाना है, कोक स्टूडियो का एक और बहुत ही प्यारा और धमाकेदार नंबर लेकर के आ रही हूँ. लेकिन फिलहाल मुझे विदा दीजिएगा आज के लिए. आज के लिए आपकी होस्ट आपको टाटा बाय बाय कर रही है. कल फिर मिलेंगे 12:30 से 2:30 बजे तक, और ऐसे ही कुछ प्यारे और खूबसूरत गाने चलते रहेंगे, कुछ चटपटी बातें भी चलेंगी मेरी. और अगर आप मुझे और सुनना और देखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बिहारी मॉम इन अमेरिका है मेरा हैंडल, तो वहाँ भी देख सुन सकते हैं आप मुझे. फिलहाल इस गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ, इंजॉय करिए इसको, और कल फिर मिलेंगे ठीक 12:30 बजे.

0: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
1: लैपटॉप में.
0: इन्वेस्टमेंट?
1: गूगल ड्राइव.
0: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
1: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
0: डैड वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: Documents ya parcel bhejni hai?
5: हाँ.
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ.
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ.
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
12: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panasia.
13: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो.
8: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास. जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट. पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार. सिर्फ फनीशिया रेडियो पर.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Funasia Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूँ किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with सुनहरी किरण. और जी, आज है थर्सडे. आप जानते हैं, फर्स्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ आपके लिए लेकर आती हूँ फूड जंक्शन, जहाँ हम बात करते हैं कुछ मुख्तलिफ ममालिक की, उनके पॉपुलर शहरों की, जहाँ हम एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो हमें वहाँ क्या खाना चाहिए, उनके लोकल फेवरेट्स, उनके देसी फेवरेट्स, उनके डिजर्ट फेवरेट्स एंड सो मच मोर दैट इज देयर टू ईट. और जो रेस्ट ऑफ द थर्सडेज होते हैं हमारे, उसमें लेकर आती हूँ आप ही की फरमाइश पे वो 90s का बॉलीवुड गाने, कुछ 90s की दिहाई के आपके लिए प्ले किए जाते हैं, वो ऐसी मेमोरीज जिनको, मतलब मेरे लिए तो वो बॉलीवुड की अर्ली मेमोरीज हैं. दैट इज वेयर माय लव फॉर बॉलीवुड स्टार्टेड. सो लेट्स बिगिन आर 90s का बॉलीवुड जर्नी राइट हियर विद सुनहरी किरण. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग.

0: ऑल राइट जी, बिल्कुल सही जगह पे ट्यून्ड इन हैं आप 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो और आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में वक्त आ चला है आपको कनेक्ट करने का विद माय फैमिली होम लोन. और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होम मॉर्गेज एक्सपर्ट फ्रॉम माय फैमिली होम लोन डॉट कॉम जो कि फैमिलीज को होम लोन ऑप्शन समझाने में मदद करते हैं. और लेट्स वेलकम शिफाली पंजवानी इन द स्टूडियोज. शी इज गोइंग टू टेल अस मोर अबाउट माय फैमिली होम लोन. गुड आफ्टरनून Shefali ji, how are you doing?
1: I'm doing great. Good afternoon to you and good afternoon to all Phoenicia listeners.
0: Thank you so much for connecting with us this afternoon, Shefali ji. Please begin by telling our listeners, what is My Family Home Loan aur aap kya kya services provide karte hain?
1: Sure. We help borrowers with a customized financial solutions for their residential and commercial needs. For buying homes, investment homes, or buying commercial real estate or businesses.
0: All right, that sounds good. So, Shivali ji, pehla sawal aapse ye poochte hain ki agar Texas homeowners hain, to hamare ghar mein equity hai, lekin kai baar hame pata nahi hota ki us equity ko access karne ke options kya kya hain hamare paas. To kya aap hame guide kar sakti hain a little bit?
1: Yes, great question. So, uske options ye hai, HELOC hai. Which is a line of credit or home equity loan hai, which is a HELOC. Simple language mein, let me explain it to everyone. HELOC ek credit line ki tarah kaam aata hai, jo aapke home se secured hoti hai. Aapko ek limit di jati hai, aur aap wo ek limit hai, usko aap use karte ho, aur usme aap punch out and punch back in kar sakte ho. So ye hai HELOC. और उसमें आपको जितना यूज करना है, जितनी आपकी नीड है, उस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो. सो इट्स लाइक अ 3 ईयर ड्रॉ, 5 ईयर ड्रॉ, डिपेंडिंग ऑन योर लोन प्रोडक्ट. फिर सेकेंड ऑप्शन जो है वो ही लोन है, जिसमें एक अप्रूव्ड अमाउंट दिया जाता है, विच वर्क्स जस्ट लाइक एज अ फिक्स्ड लोन, जो सेकेंड लोन होता है विदाउट टचिंग योर फर्स्ट मोर्टगेज. इफ यू हैव अ फर्स्ट मोर्टगेज एट अ वेरी लो रेट, It doesn't make sense to touch that and refinance it. So, un homeowners ke liye ye HE loan ka option best rehta hai ki they can only take out a second loan with the same fixed rate and a same fixed payment. And there is a loan terms available for 10 years, 15 years, 20, 30, depending on your scenario and depending on your need. So, ye ek option hai jo homeowners ko agar unke paas equity hai, they can take it out. Only the difference is between HELOC and HE loan is HELOC is only available for primary residence. Jabki HE loan is available for primary and investment properties. And if you have any questions based on your individual scenario, like if you are self-employed or you have a businesses and that you would like to still take the equity out, you can reach me out at 469-734-3338.
0: There you go, 469-734-3338. Shefali ji, hame ye bhi bataiye, for real estate investors, ki jinki rental property buy karna chahte hain jo log, lekin traditional income documentation qualification ko difficult bana rahi hai, to aise scenario mein, what should we do and how can you help?
1: ओके, ऐसे सिनेरियो में DSCR लोन ऑप्शन एक हो सकता है, जिसका मतलब है डेट सर्विस कवरेज रेशियो. दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड, DSCR. सिंपल लैंग्वेज में ये प्राइमरली ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी की क्वालिफाइंग रेंटल इनकम क्या है, उसके बेस के ऊपर उसका DTI कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लेंडर गाइडलाइंस. और वो एक रेंटल ऑप्शन अवेलेबल है रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए DSCR. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वालिफाइंग रेंट, लेट्स से इट्स 2500 मंथली और आपका हाउसिंग एक्सपेंस है $2000, विच इंक्लूड्स योर प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. सो आपका DSCR होता है 1.25. हाउ डिड आई गेट दैट नंबर? 2500 डिवाइडेड बाई 2000, दैट्स योर DSCR रेशियो 1.25. सो ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए. जिनकी इनकम ट्रेडिशनल नहीं है, दो दे डू हैव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एंड दे हैव अ क्वालिफाइंग रेंटल इनकम, सो जस्ट बेस्ड ऑन दैट लोन प्रोग्राम इज अवेलेबल फॉर द रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स. If you have any questions regarding this, if you are self-employed, W-2, and also owns an investment portfolio, and you would like to either purchase or take the equity out from that home, you can call us, and we can sit down with you, and we can discuss the scenario. You can reach me at 469-734-3338. Again, my number is 469-734-3338.
0: There you go. That was Shefali Panjwani from myfamilyhomeloan.com. 469-734-3338 is the way to get in touch with her. Shefali ji, thank you so much for connecting with us this afternoon. We will talk to you next time.
1: Thank you all.
0: You have a good one.

0: और इसी के साथ आपको बताती चलूं जी कि पेज 3 ईटरी आपके लिए लेकर आए हैं फ्लेवर्स ऑफ मुंबई एंड लखनऊ. जी हाँ, हब 121 इन मिकनी में ये लोकेटेड हैं. और यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, मतलब क्या कुछ नहीं मिलेगा, ये सवाल है. फ्लेवरफुल, अगर आपकी चाट पसंद है, आपने स्नैक्स खाने हैं, क्विक बाइट्स खाने हैं, वो भी आपको यहाँ मिलेंगे. अगर आपको प्रॉपर खाना खाना है तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा, जैसे कि तंदूरी डिशेस, बिरयानी, हैंड क्राफ्टेड ड्रिंक्स भी मिलने वाली हैं अगर आप ड्रिंक्स के लिए जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. और उसके साथ बहुत कुछ, सैंडविचेस हैं, रोल्स हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल. आपकी चॉइस होनी चाहिए. वेजिटेरियन हैं आप, नॉन वेज हैं, पेज 3 ईटरी पे आपके लिए कुछ मौजूद है. विजिट फॉर डिनर, डेट नाइट, इवनिंग विद फ्रेंड्स, एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू. एक्सप्लोर देयर मेन्यू बाय विजिटिंग page3eatery.com.
1: Four, three, two, one, let's start the fun.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
6: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट इन्फो एट सीमा मेहता लॉ फर्म डॉट कॉम
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
12: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
13: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
12: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
13: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
11: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
14: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
15: जिंदगी एक रंगमंच है
16: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
17: होचो
18: होको
17: होचो
18: होको
17: होचो
18: इट्स होको।
19: अरे बस भी करो यार।
18: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
19: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
20: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
17: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
21: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो।

सुन रहे हैं आप 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो, वो 90s का बॉलीवुड लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूँ और कुछ 90s के खूबसूरत गाने। अच्छा जी, हर हफ्ते जब मैं 90s का बॉलीवुड लेके आती हूँ तो हम कोई ना कोई थीम फॉलो करते हैं, जैसे कि द बैंकेबल स्टार्स ऑफ दोज ईयर्स, या फिर पिछले हफ्ते हमने नदीम श्रवण को कवर किया था अपने 90s के बॉलीवुड में, जो उन्होंने 90s में गाने दिए। और उससे पिछले हफ्ते हमने बात करी थी जी द टॉप हीरोइंस की, तो पांच लीडिंग लेडीज के हमने जिक्र किया था जिनमें नाम आया था माधुरी दीक्षित, काजोल, साथ ही साथ जो है जूही चावला और करिश्मा कपूर एंड मनीषा कोइराला। ये बात हमने की थी और पांच इनके मैंने आपको बातें भी बताई थी, गाने भी प्ले किए थे। और फिर मैंने आपसे कहा था कि द रेस्ट ऑफ द 5 या 10 जो भी हमारे पास हैं, बिकॉज देयर वर मेनी गर्ल्स हु वर वर्किंग इन दी 90s और बड़ी जबरदस्त जबरदस्त फिल्में हमें दे रही थी, तो अब जो है हम एक और नाम की तरफ जा रहे हैं जो कि 90s की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्टार थी। उनके गाने बड़े मशहूर होते थे, बड़े सारे जबरदस्त आप कह लीजिए डांस नंबर्स भी उनके ऊपर परफॉर्म होते थे। एक बारिश का गाना तो ऐसा उन लोग के ऊपर पिक्चराइज हुआ जिसने हिस्ट्री बना दी। वो कहते हैं ना, वन ऑफ दोज आइकॉनिक बारिश नंबर्स, आपने जरूर पहचान लिया होगा। अगर आपने नहीं पहचाना तो फिर मैं आपको मौका दे रही हूं पहचानने का विद बरिस्ता का गिव अवे। जी हाँ, बरिस्ता फ्रिस्को के लिए ये खबर, और बाकी तमाम लोग भी जो इंजॉय करते हैं अच्छे खाने को, कि रेडी हो जाइए रॉयल फीस्ट के लिए। पॉपुलर बरिस्ता House from Denton is now open in Frisco by Prism Bar and Grill. और आप यहाँ enjoy कर सकते हैं authentic हैदराबादी biryanis, North Indian favorites, delicious desserts हैं, बहुत कुछ है उनके menu में। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए। दे आर लोकेटेड एट 6377 कस्टर रोड, फ्रिस्को, टेक्सस। तो अब आपको क्या करना है, मिलेगा आपको ये $20 का गिफ्ट कूपन फॉर योर डाइन इन ओनली। अगर आप ये $20 का गिफ्ट कूपन जीतना चाहते हैं फॉर डाइन इन ओनली, तो ये जो गाना मैं आपको प्ले कर रही हूँ ये उन्हीं स्टार पे पिक्चर आया, इट्स जस्ट अ गिव। आपको मुझे बताना है कि ये स्टार कौन सी है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो 90s की बहुत ही फेमस स्टार थी। और मुझे इस मूवी का नाम आप जरूर बताइए कि किस मूवी से ये गाना लिया गया है, और जीत लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए इसमें जीतने के लिए फॉर दिस $20 गिफ्ट कूपन फ्रॉम बरिस्ता हाउस इन फ्रिस्को, डाइन इन ओनली।

जी हाँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बस में नहीं है आपको विनर अनाउंस करना. जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं उसी सीक्वेंस को एक नंबर असाइन होता है, एक मैथ के फॉर्मूले में जाता है और उसके बाद लकी विनर अनाउंस होते हैं. सो आप सबकी सबसे पहले फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. $20 का ये कूपन आपके लिए आया था जो आप जीत सकते थे फ्रॉम बरिस्ता हाउस लोकेटेड इन फ्रिस्को. नया खुला है ये, ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. और दिस कूपन इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली एट द फ्रिस्को लोकेशन.

जीत सकते थे फ्रॉम बरिस्ता हाउस लोकेटेड इन फ्रिस्को. नया खुला है ये, ब्रॉट टू यू बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल. और दिस कूपन इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली एट द फ्रिस्को लोकेशन. और आप सब लोग मुझे कम से कम 15 कॉल्स तो डेफिनेटली रिसीव हुई हैं और नंबर्स डाल दिए गए हैं और लकी विनर का नंबर अनाउंस हो चुका है. हमारे आज के लकी कॉलर हैं कॉलर नंबर 8 विच इज सौरभ चौधरी. सौरभ कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. 2 दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए. एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 डेज टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर गिव अवे. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एज ऑलवेज आई कैन नॉट थैंक यू इनफ. आप सबकी पार्टिसिपेशन का भी फोन लाइन बज हो रही है जी. कॉन्टेस्ट का टाइम खत्म हो चुका है, नो मोर आंसर्स आई एम गोइंग टू टेक. बट बहुत बहुत शुक्रिया. आई स्टिल हैव वन मोर गिव अवे फॉर यू. लेकिन इट रियली रियली मीन्स अ लॉट जब आप लोग फोन उठाते हैं, टाइम निकालते हैं और कॉल करते हैं. थैंक यू.

जी हाँ, 90s के दौर का तस्करा हो तो बड़े बड़े नामों में रवीना टंडन का जिक्र ना हो तो उसके बगैर वो तस्करा हो जाता है इनकम्प्लीट. शी बिकेम वन ऑफ द डेकेड्स मोस्ट रिकग्नाइजेबल स्टार्स विद मूवीज लाइक मोहरा, जिसका भी आपने गाना सुना था, टिप टिप बरसा पानी, या फिर दिलवाले, जिसमें वो अजय देवगन के साथ नजर आई थी, या फिर अंदाज अपना अपना और खिलाड़ियों के खिलाड़ी, या फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, या फिर जहां से उनके करियर का आगाज हुआ था वो नजर आई थी फिल्म पत्थर के फूल में, जो सलमान खान के साथ थी. एंड इट वाज अ सुपर हिट मूवी एज वेल विद सम ब्रिलियंट सॉन्ग्स. तो ऑफ कोर्स, और टिप टिप बरसा पानी तो खैर लेजेंडरी बन ही गया था. सो 90s में जो है रवीना टंडन ने जो काम किया, जो अपनी मूवीज दी, उनकी वजह से 90s डेफिनेटली उन्हें याद रखने वाला है. एक बार आपको उनके बारे में बताती चलूं कि 26 अक्टूबर 1972 वाज हर डेट ऑफ बर्थ, और 90s की लीडिंग लेडी

में शुमार होता है उनका। सेवरल अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए, नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला उन्हें, दो फिल्म फेयर अवार्ड्स और फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स भी उन्होंने जीते हैं। दैट इज द चार्म ऑफ रवीना टंडन।

अच्छा जी, रवीना टंडन की बात तो हुई, अब हम आते हैं एक और नाम पे। 90s की बॉलीवुड की हीरोइंस की बात हो और इस आइकॉनिक लड़की की बात ना हो, दैट इज़ जस्ट नॉट हैपनिंग। शी इज़ उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने 90s में हीरोइंस का वो जो ट्रेडिशनल इमेज होता है उसको कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दिया। शी जस्ट ब्रोक द सीलिंग एंड उसमें से निकली एक नई बॉलीवुड की हीरोइन, मतलब एक नई बॉलीवुड हीरोइन की डेफिनेशन, दैट वाज उर्मिला मातोंडकर। उनमें इनोसेंस भी थी, ग्लैमर भी था, डांस का कॉन्फिडेंस भी था और सबसे इंपॉर्टेंट, शी हैड दैट स्क्रीन प्रेजेंस दैट लेफ्ट एवरीबडी ऑड व्हेन वी सॉ हर इन रंगीला। लेकिन रंगीला से पहले ये जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, बचपन में उर्मिला नजर आई थी हमें। बचपन की वो फिल्म अगर आपको याद हो, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, 1980s के ये चाइल्ड रोल्स उन्होंने किए। 90s तक आते आते उन्होंने जब लीड रोल्स में आई तो फिल्म्स लाइक नरसिम्हा, जिसमें उनका एक बड़ा प्रॉपुलर गाना था, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, और फिर अंतम, और फिर आगले लग जा, द्रोही जैसे प्रोजेक्ट्स तो उनको मिले, नजर आती रही वो। लेकिन कहां से उनके करियर ने अपना ग्राफ चेंज कर लिया, दैट वॉज द मूवी रंगीला, विच वॉज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। राम गोपाल वर्मा ने रंगीला दी हमें, लेकिन उर्मिला मातोंडकर को मिली मिली जोशी का कैरेक्टर, और मिली जोशी ने एब्सोल्यूटली पूरा वो, अभी जो हम बात कर रहे थे, डेफिनेशन ऑफ बॉलीवुड हीरोइंस को बदल दिया। सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस वन, उर्मिला मातोंडकर एंड एब्सोल्यूटली बैंकेबल स्टार्स इन द 90s।

0: और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल डीलिंग विद द पेपर वर्क, द इंश्योरेंस कंपनीज, द लीगैलिटीज और साथ ही साथ आपकी अपनी सेहत. और इतना कुछ होता है इस सारे प्रोसेस में, तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड गेट एन अटर्नी टू डू द रेस्ट फॉर यू. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. दे विल फाइट योर केस, गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अंटिल यू विन. 469-300-5046 या फिर attorneyomar.com.
1: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
2: क्या मतलब?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
6: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
7: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant, entertainment, luxury or excitement, sub ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
9: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina, first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
10: Every home has a story. Let's create yours together.
11: Sadia!
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
16: कितने आदमी थे?
17: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, माई टाइम इक्विटी आपको ऑफर करती है पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रिटायरमेंट प्लानिंग. कोई भी आपका अपनी फाइनेंसिस को लेके कंडीशंस हो या रिक्वायरमेंट्स हो तो आप माई टाइम इक्विटी को कॉल कीजिए फॉर द राइट गाइडेंस. दे विल बी एबल टू हेल्प यू. माई टाइम इक्विटी डॉट कॉम या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 4697021272. 4697021272 is that number. Give them a call and see how they can be helpful to you. और इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर वेलकम करती हूँ. सुन रहे हैं आप वो 90s का बॉलीवुड और इसमें हम आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसी फीमेल लीडिंग लेडीज की जिन्होंने 90s के हमारे बॉलीवुड के एक्सपीरियंस को चार चांद लगा दिए. और उनमें हम आ पहुंचे थे उर्मिला मातोंडकर की बात कर रहे थे और उर्मिला का ये गाना आप सुन रहे थे. You know the iconic moves जो उन्होंने रंगीला में की. रंगीला से उर्मिला ने हमें एक नया definition दिया बॉलीवुड की हीरोइन का. The dance, the colorful clothes, the attitude, the glamour. और मतलब उनको देख के उसके बाद लोग ये कहने लगे कि she is not just an actress, she is a style statement. और जो कि हमने बाकी आगे कुछ सालों में देखा. अच्छा, अब हम बढ़ रहे हैं अगली हीरोइन की तरफ जिन्होंने 90s में हमें बहुत कुछ खूबसूरत दिया. ब्यूटिफुल आइडेंटिफिकेशन उन्होंने बनाई. एक बहुत ही प्यारी सी गर्ल नेक्स्ट डोर मैं इनको कहती हूँ. बिल्कुल खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की जो कि बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे यू नो इट कैन बी मी एंड यू, इट कैन बी एनी वन. दैट इज सोनाली बेंद्रे, नोन फॉर हर एलिगेंस एंड हर डिस्टिंक्टिव लुक्स. कुछ बेहतरीन फिल्में उन्होंने हमें दी जैसे कि सरफरोश, मेजर साहब, डुप्लीकेट, दिल चले, हम साथ साथ हैं. तो चलिए फिर एक गाना आपको सोनाली बेंद्रे का सुनाते हुए आगे चलते हैं. दिस इज टेकन फ्रॉम द मूवी कर जिसमें नजर आई थी सोनाली सुनील शेट्टी के साथ.

don't mind. Sonali Bendre is an acclaimed Indian actress और जी मॉडल थी, ऑथर हैं और साथ ही साथ बॉलीवुड के 90s के बॉलीवुड पे सोनाली का एक अलग ही राज था. She remains a deeply respected figure in Indian media today, known for her graceful screen presence. साथ ही साथ कुछ बेहतरीन फिल्में जिनमें वो नजर आई, जैसे कि सरफरोश, हम साथ साथ हैं, दिल जले और बहुत सारे सुपरस्टार्स, मेजर सुपरस्टार्स के साथ सोनाली ने काम किया. तो जी एक और गाने के साथ हम अगली हीरोइन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं. अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके नेटवर्क में शामिल नहीं हो रहा, तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपको ऑफर कर रहे हैं एक इनिशिएटिव, दैट इज पैशन हेल्थ डायरेक्ट. This is a program that they are introducing. $85 a month में आप इसकी membership ले सकते हैं और इस membership में आपको मिलेगा primary care, preventive care, medication management, telehealth और भी बहुत कुछ. This is not a health insurance plan. Eligibility restrictions do apply. तो आपका कोई भी सवाल है तो आप उन्हें call कर सकते हैं या text कर सकते हैं. That number is 214-666-6259. This is passionhealthphysicians.com. यहाँ आप log on कर सकते हैं to find out more. और ये भी आपको बताऊं कि उनकी जो Frisco location है, that is open Saturdays and Sundays as well for your convenience. So give them a call, text them, check them out what they are offering you and you might just be able to avail it. तो इस अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं हम, लेकिन गाने पे बढ़ते हुए मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहती हूँ कि the views and opinions that are expressed in these live announcements as well as the interviews that we do here on our shows are paid advertisements and does not necessarily share the opinions of the radio station nor the RJ.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

आमिर खान के साथ नजर आई थी सोनाली बेंद्रे इस फिल्म जिसका नाम था सरफरोश में। अच्छा जी, अब आपके लिए एक गिव अवे लेके आई हूँ डक्ट टाइम की तरफ से। सबसे पहले तो डक्ट क्लीनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है ये हम सबको मालूम है, और अगर आप जो है उसको कहीं आपको मोल्ड फील हो रहा है, डस्ट फील हो रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। फॉर प्रोफेशनल डक्ट क्लीनिंग दैट हेल्प्स रिमूव डस्ट, क्लियर क्लॉग्ड वेंट्स, इम्प्रूव एयर फ्लो और रिड्यूस हिडन फायर हैजर्ड्स, ट्रस्ट कीजिए डक्ट टाइम को। और डक्ट टाइम की फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है, वी विशिंग हिम देम एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल फर्स्ट एनिवर्सरी एंड लॉट्स ऑफ हैप्पी ईयर्स अहेड, सक्सेसफुल ईयर्स अहेड, प्रॉस्परस ईयर्स अहेड। और आप अगर ये अपनी डक्ट क्लीनिंग करवाना चाहते हैं तो मैं आपको नाम और नंबर दे देती हूँ जीतू पटेल डक्ट क्लीनिंग के, इनको आपने कॉन्टैक्ट करना है टू अरेंज और टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर अ क्लीनर सेफर एंड फ्रेशर होम। जीतू पटेल साहब का नंबर ले लीजिए 972-877-2500, उनका नंबर। और जी अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे एयर डक्ट डक्ट टाइम आपके लिए लेकर आए हैं 50% ऑफ ऑन योर डक्ट क्लीनिंग। जब आप डक टाइम को कॉल करेंगे, अपनी बुकिंग करेंगे और ये गिव अवे आप जीते हुए होंगे तो मिलेगा आपको 50% ऑफ। तो यानी कि आपको कॉल करके ये गिव अवे जीतना पड़ेगा। अच्छा, जीतना पड़ेगा तो आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा तो बात सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सोनाली बेंद्रे का हम बता रहे थे कि 90s के दौर की वन ऑफ द पॉपुलर एक्ट्रेसेस में, वेरी पॉपुलर एक्ट्रेसेस में सोनाली का नाम शुमार होता है। तो आप मुझे बताइए, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि सोनाली ने अपने करियर में सिर्फ एक ही दफ़ा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। आपको मुझे कॉल करके बताना है कि वो कौन सी फिल्म के लिए और क्या अवार्ड जीता था उन्होंने। इट इज़ अ डिफरेंट एंड काइंड ऑफ अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो ज़रा देख के पढ़ के बताइएगा 972-235-5555। कौन सी फिल्म के लिए सोनाली ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता और किस गाने के लिए जीता था, ये बताना है आपको मुझे। वंस अगेन द नंबर इज 972-235-5555। और मैं जो आपके लिए गाना लगाने लगी हूँ सोनाली का, ये मेरा ख्याल है कि वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स। कुछ गाने होते हैं जिनमें मैं आपको बताती हूँ कि भाई ये है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रोमांटिक गाना, तो ये है टॉप 10 की लिस्ट में आता है मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स।

0: जी हाँ, मैं समझा कि जैसे मेरी धड़कनों को तेरी धड़कनों का पयाम आ रहा है। आप सुन रहे थे गाना फ्रॉम द मूवी नाराज, सोनाली बेंद्रे और अतुल अग्निहोत्री पे पिक्चराइज्ड। आपसे सवाल पूछा था जी कि बताइए कि सोनाली बेंद्रे ने अपने करियर का पहला अवार्ड कब जीता और किस चीज, किस मूवी के लिए जीता और क्या अवार्ड मिला उन्हें। तो जवाब सबसे पहले, आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, 1995। दैट इज द ओनली टाइम शी वन अ फिल्म फेयर अवार्ड, नॉट वन बट ट्वाइस। और दो उनको फिल्म फेयर मिले उस दिन जिस दिन फिल्म फेयर की सेरेमनी थी। सेंसेशनल डेब्यू जीता उन्होंने फॉर द मूवी नाराज, जिसका ये गाना आप सुन रहे थे, और उसी के साथ लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर जीता उन्होंने फॉर द मूवी आग, जिसमें वो गोविंदा के साथ नजर आई थी। तो दोनों ही, मतलब ऑफ कोर्स इट वाज सो प्रॉमिसिंग एंड देन शी गेव अस सम ब्रिलियंट मूवीज एंड सम एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल म्यूजिक। तो जी, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। विनर अनाउंस करती चलूं, आज के हमारे लकी विनर हैं कॉलर नंबर 3, विच इज देव पॉल। देव, कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। आपका नाम और नंबर और ईमेल हमने ले लिया है। प्लीज लुक आउट फॉर दैट कॉल और दैट ईमेल, इट विल कम टू यू वेरी सून। एंड आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये आपके लिए डक टाइम की तरफ से 50% ऑफ आया था ऑन डक्ट क्लीनिंग फ्रॉम डक टाइम। सो कांग्रेचुलेशंस देव, और आप तमाम लोग वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इट रियली रियली मैटर्स अ लॉट। और आई विश कि मैं सबको तोहफा दे दूं या विन दे दूं, बट आई कैन, देयर कैन ओनली बी अ वन, बी वन विनर। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
9: How may I help you?
10: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
9: Fear not, we have the perfect solution.
11: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
12: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
11: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर. कॉल 214.
13: कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
14: ये क्या होता है?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
11: And now at a bigger location, just 3 doors down, with limited reservation available.
15: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
16: We need to talk.
17: अब क्या हुआ?
16: Nothing. It's not you.
17: Oh no.
16: It's the distance.
17: Distance? We live 10 minutes apart.
16: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
14: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
18: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
14: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
18: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
19: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
15: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
20: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. बहुत बहुत शुक्रिया आज की दोपहर मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए. कुछ बेहतरीन 90s की के गाने आपके लिए लेके आई हूँ और बात हो रही है 90 की दिहाई की उन खूबसूरत अदाकाराओं की जिन्होंने हमें दिए कुछ बेहतरीन मूवीज, कुछ बेहतरीन गाने और कुछ ऐसी यादें जो कि डेफिनेटली भुलाई नहीं जा सकती. इफ़ यू आर दोज पीपल जिन्होंने 90s की मूवीज से के साथ बड़े हुए हैं तो डेफिनेटली यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और अब जो लीडिंग लेडीज की बात हो रही है उसमें एक और नाम ऐड करते हैं और वो नाम है एक बहुत ही पावरफुल एक्ट्रेस का. ये सिर्फ हीरोइन नहीं है, शी इज जेन्युइनली एन एक्ट्रेस एंड दिस इज तब्बू जिन्होंने अपनी पहली जो इनकी एज अ लीडिंग लेडी जो मूवी रिलीज हुई थी वो हुई थी 1994 में पहला पहला प्यार और इसमें ये ऋषि कपूर के साथ नजर आई थी. हाउएवर चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं हुई लेकिन 1994 में ही मूवी वॉज काइंड ऑफ हिट, आई मीन पीपल लाइक्ड इट. लेकिन 1994 में ही इनके करियर को एक नया शिफ्ट मिला क्योंकि उसी साल आई विजयपथ जिसमें ये नजर आई अजय देवगन के साथ और अजय देवगन की साथ की हुई इस फिल्म के लिए जीता तब्बू ने बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड फिल्म फेयर के लिए. सो 90s की दिहाई और तब्बू की बातें, तब्बू पे पिक्चराइज्ड गाने, इसके बगैर ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा. सो लेट्स बिगिन. 1994 की ये फिल्म विजयपथ का एक ऐसा गाना जिसके अभी भी रिमिक्सेस बनते हैं, अभी अभी काजोल के ऊपर भी बना. दिस इज रुक रुक रुक, रुक.

अलीशा चिनॉय की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना पिक्चराइज्ड ऑन तब्बू फ्रॉम द फिल्म विजय पथ, जिसके लिए उन्होंने जीता था डेब्यू फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रॉम फिल्म फेयर। अच्छा जी, तब्बू जो है वो 1990s में उन्होंने कुछ खूबसूरत फिल्में हमें दी, जैसे कि माचिस हुई, विरासत हुई, और इसी के साथ जो है कुछ और जीत जैसे फिल्म, अगर आपको याद हो जीत में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये उनकी बड़ी फिल्मों के नाम है और इन्हीं के गाने मैंने आपके लिए लाइनअप किए हुए हैं। अब मैं अगला गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ माचिस फिल्म का, जिसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन पाई थी तब्बू ने इन 1996। लेकिन इससे पहले कि मैं ये गाना आपके लिए प्ले करूं, आई हैव टू टेल यू कि अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है, जैसे कि वेडिंग है, हाउस वार्मिंग है, कोई स्पेशल सेलिब्रेशन है, कोई और आपने बिग गेट टुगेदर थ्रो करना है, तो इससे पहले कि आप परेशान होना शुरू हो कि भाई कहां से केटरिंग होगी, कहां से डिकोर होगा, क्या क्या होगा, खाना कहां से आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप विनेसा इवेंट्स को लेके आइए। विनेसा इवेंट्स ब्रिंग्स इट ऑल टुगेदर, वेन्यू डिकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय पसेरा ग्रैंड। आपके लिए हर काम आसान कर देते हैं विनेसा इवेंट्स वाले, ताकि आप अपने इवेंट को बिल्कुल शानदार तरीके से और रिलैक्स तरीके से इंजॉय कर पाएं। हरी बसेरा साहब इज द कॉन्टैक्ट पर्सन वेयर यू कैन कॉल, और उनका नंबर है 4694428770 4694428770. This is Vanessa Events, your celebration partner. They are looking forward to making things much easier for you. Get in touch.

दिखाया कि हीरोइंस सिर्फ ग्लैमर तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि शी दे कैन मूव बिटवीन मेनस्ट्रीम सिनेमा एज वेल एज सीरियस क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया माचिस, विरासत, हुतुतु और हम साथ साथ हैं, या फिर रुक रुक रुक वाली जो विजयपत थी. सो तब्बू ने प्रूव किया कि हीरोइंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर बॉक्स में फिट नहीं होती, एक्ट्रेसेस एक्चुअली पर्टिकुलर बॉक्स में फिट नहीं होती. ग्लैमरस भी हो सकती हैं, सीरियस भी हो सकती हैं, रोमांटिक भी हो सकती हैं, एंड दे कैन बी इंटेंसली ड्रामेटिक. अब तक हम तब्बू की वो एक्टिंग के शाहकार देख रहे हैं. वैसे मैं उनकी काफ़ी सारे गाने आपके लिए प्ले करती, बट सिंस दिस इज वो 90s बॉलीवुड, सो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू ओनली द 90s का गाने जो के तब्बू पे पिक्चराइज हुए थे. वरना अभी जब उनकी अंधाधुन आई तो हम सारे ही हैरान रह गए थे कि ये भी काम तब्बू ने किया और क्या शानदार किया. तो इस गाने के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे. दिस इज येट अनदर आउटस्टैंडिंग फिल्म जिसके लिए तब्बू ने नॉमिनेशन पाई बेस्ट एक्ट्रेस की, टेकन फ्रॉम द मूवी विरासत.

और जी, 4-time TEDx स्पीकर एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेज शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठा आर कमिंग टू डालस फॉर अ पावरफुल करियर ग्रोथ वर्कशॉप. इस करियर ग्रोथ वर्कशॉप में वो क्या बात करेंगे जी? दे विल टॉक अबाउट हाउ टू रिपोजिशन योर वैल्यू, स्ट्रेंथन योर लीडरशिप presence as well as accelerate your career with clarity and confidence. So, agar aap Dallas mein professional hain, you're feeling a little stuck or wondering if AI and workplace changes are leaving you behind or how to deal with the changing environment, toh phir this workshop is where you need to go. It is happening in Dallas on September 19th. Aap register kar sakte hain by logging on to playitfull.com/Dallas. रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, प्ले playitfull playitfull.com/Dallas. दिस इज वेयर यू स्टार्ट बिल्डिंग योर पावरफुल करियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी. सो डू लॉग ऑन एंड डू रजिस्टर योर सेल्फ एंड अटेंड दिस वर्कशॉप हैपनिंग ऑन सेप्टेम्बर 19th इन डालस. अच्छा जी, बात अब तबू से मूव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. ये 19 देखिए, मैं आपको बताऊं, 1997 से इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, बिकॉज 1994 में जब सब हीरोइंस फिल्मों में काम कर रही थी, ये ब्यूटी पेजेंट लड़ रही थी, यानी कि ब्यूटी पेजेंट को जीतने की कोशिश कर रही थी. फेमिनिस्ट इंडिया इन्होंने जीता 1994 में और रनर अप रही. एक्चुअली सुष्मिता सेन ने फर्स्ट पोजीशन ली थी, जिसकी वजह से सुष्मिता जो हैं वो मिस यूनिवर्स के लिए गईं और ऐश्वर्या राय गईं मिस वर्ल्ड के लिए. और फिर क्या हुआ 1994 के मिस वर्ल्ड के कॉम्पिटिशन में, ये तो कहानी सभी को मालूम है. अभी क्या रिपीट किया जाए उसे. बहुत सारी उन्होंने ऐश्वर्या ने अवार्ड्स जीते और एट दी एंड वो जो छोटे छोटे होते हैं मिस फोटोजेनिक एंड मिस दिस एंड मिस दैट, और उसके बाद फाइनली उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीत लिया. तो वो बड़ा स्पेशल ईयर था, बिकॉज सुष्मिता वन मिस यूनिवर्स, ऐश्वर्या वन मिस वर्ल्ड, और मेरे ख्याल दिया मिर्जा ने जीता था मिस साउथ एशिया पैसिफिक. तो यहाँ से जब वो वापस आई अपने एक साल का टूर शुअर करके, फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया. 1997 से उनके करियर का आगाज हुआ विद मूवीज लाइक और प्यार हो गया इन हिंदी. फिर आई उनकी आप लौट चलें, हम दिल दे चुके सनम और ताल. 1990s में उन्होंने बस ये चार फिल्में की, और इन चार फिल्मों के बाद हम दिल दे चुके सनम और ताल के लिए उन्होंने पाया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और मतलब नॉमिनेशन पाई, और हम दिल दे चुके सनम के लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड. दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ दिस ब्यूटिफुल लीडिंग लेडी स्टार्टेड इन लेट 90s. बट नंदीलेस बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता 90s की बहुत ही शानदार हीरोइंस में इनका नाम.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
6: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
5: And pistachio lamb chops?
6: Full on flavor ka fusion.
7: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
8: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
10: कैसे?
11: पेज 3 ईटरी?
10: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
11: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
10: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
12: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
14: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
15: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
14: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
15: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
16: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
9: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
16: Barista House, richness of biryani bliss.
17: ये तारा वो तारा हर तारा।
18: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: अजी सुनते हो?
19: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
20: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
21: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Funasia Radio.
22: Don't touch that dial. Keep listening.

104.9 FM Fun Asia Radio आपके साथ रहता है 24/7 और हम भी आपके साथ रहते हैं 972-235-5555 के थ्रू आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई अपनी बात कोई शेयर करनी है, कोई गाना रेकमेंड करना है, तो डेफिनेटली वी आर ऑल इयर्स. तो जी ये तो हुई आपके लिए ये बात और हमने किया 90s का बॉलीवुड सेलिब्रेट जो कि हम हर थर्सडे को करते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जिसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ फूड जंक्शन. तो वी आर गोइंग टू रैप अप दिस सेगमेंट ऐश्वर्या के गाने के साथ. हमने उस 90s के बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस को अब रैप अप किया है. नेक्स्ट वीक जब मैं आपके लिए 90s का बॉलीवुड लेके आऊंगी तो मैं सोच रही हूं कि आपके लिए लेकर आऊं द ट्रेंडिंग जोड़ीज. उस जमाने में भाई सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो ट्रेंडिंग जोड़ीज जो हमें पसंद थी, मुझे पसंद थी, आपको पसंद थी, वही ट्रेंडिंग जोड़ीज थी जिनकी फिल्मों को हम जाके हिट करा देते थे. तो ट्रेंडिंग जोड़ीज के बारे में बात करेंगे. 90s में वो कौन सी जोड़ियां थी जो मुझे और आपको देखना पसंद था बहुत और जिनका हम इंतजार किया करते थे. विद दैट अब हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एक रीमिक्स आया था इस गाने का, बहुत पुराने गाने का, एक बड़ा ही मजे का रीमिक्स है, वो मैं आपको सुनाने वाली हूं. लेकिन उससे पहले मैं आपको देने लगी हूं वेदर की अपडेट. आज है थर्सडे सितंबर द 17th 4:40 PM इन द स्टूडियो और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है जी 98 degrees. However, इट फील्स लाइक 105. दिन रहा मोस्टली सनी, कहीं कहीं बादल से नजर आए, शायद कहीं फुहार भी पड़ी हो, लेकिन गर्मी उसी शिद्दत से थी. हीट वैल्यू इंडेक्स वैल्यूज अप टू 105. शाम रहेगी मोस्टली क्लियर, लोज इन द अपर 70s. आज का पोलन काउंट है 11.4, एक्सट्रीमली हाई. सो अगर आप पोलन से परेशान रहते हैं तो प्लीज अपनी रेमेडीज हैंडी रखिए. यू डोंट वांट टू go through that itchiness and coughness and all that stuff. UV index is 8, which is high again. So keep your sunscreens handy and keep yourselves hydrated. आज का सनराइज हुआ सुबह 7:11 7:11 AM जबकि आज का सनसेट होगा 7:30 यानी कि 7:30 PM. Now enjoy this remix of a very beautiful song.

गोल्ड प्राइस के साथ बढ़ रहे हैं आगे. अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग इस वक्त एक आउंस गोल्ड की कीमत है जी $4,341.74, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत राइट नाउ इज $139.59. कल की नस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 16 सेंट्स की कमी देखने को मिली यानी कि 16 सेंट्स, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $5.12 की कमी देखने को मिली. अच्छा, ये पूरा हफ्ता हो चुका है, आज थर्सडे है, मंडे से हम शुरू कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली सोने के भाव में कमी देखने को मिल रही है, तो आई थिंक कि कुछ प्राइसेस ज़्यादा ही नीचे जा रही हैं. लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस फॉर टुमारो.

एंड विद दैट दूं आपको ट्रैफिक अपडेट जी, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पहुंचना है तो डेफिनेटली ये एक रश आवर है और यू नो ड्राइव टाइम चल रहा है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्या क्या हो रहा है रोड्स पे. द गुड थिंग इज़ कि मुझे एक या दो ही चीज़ें बस नज़र आ रही हैं. देर इज़ अ कोलिजन दैट इज़ रिपोर्टेड एट US 67 टूवर्ड्स प्लेजेंट रन रोड साउथ बाउंड, जिसकी वजह से 3 lanes आर ब्लॉक्ड. द सिवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज़ रिपोर्टेड एक्सट्रीमली हाई. अभी कोई आप कह लीजिए 15 मिनट पहले ये इंसिडेंट वेरीफाई हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा बैकअप अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. सो अगर आप यहाँ पे हेड कर रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल एंड बी विजिलेंट बिकॉज यू माइट फाइंड अ लॉट ऑफ डिलेज. बट दैट इज प्रीटी मच ऑल दैट आई कैन सी. आई कैन ऑल्सो सी अ डिसेबल्ड व्हीकल एट US 75 टूवर्ड्स फिट्सरू एवन्यू साउथ बाउंड, जिसकी वजह से 1 lane इज ब्लॉक्ड. ऑल दो द सिवेरिटी इज नॉट हाई ऑफ दिस इंसिडेंट, बट आप जानते हैं कि रश आवर में 1 lane भी ब्लॉक हो जाए तो चारों तरफ भगदड़ जाती है, सारी लंबी लंबी ट्रैफिक लाइंस लग जाती हैं. सो प्लीज बी केयरफुल इफ यू आर हेडिंग देयर. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई कैन सी वेयर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड. सो ध्यान से चलाइए और अपना ख्याल रखिए.

और इसी के साथ वक्त आ चला है जी आपसे विदा लेने का. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. कल जुम्मा है जी, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. और जुम्मे को लेकर आती हूँ आपके लिए किड्स जंक्शन बच्चा पार्टी. रेडी हो जाइए, आई एम गोना टेक योर कॉल्स लाइव एंड देन वी विल आल्सो हैव चिल्लर पार्टी. बहुत ही मजा आता है, समवन फ्रॉम यू कम्स इन द स्टूडियो एंड को होस्ट द चिल्लर पार्टी सेगमेंट विद मी. तो हमारी जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है उसके नीचे आप अपने बच्चे का नाम, ग्रेड और एज लिख सकते हैं और somebody from our team will get back to you and they might just be our next RJ in the studio. Stay tuned, stay connected, lots of fun. Kamal Damal Masti is always here for you on Fun Asia Radio. That is a bye from my side. Have a good one.

This bass is heavy.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
8: Are you sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
9: Maa, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
12: Hoko.
13: It's Hoko.
14: अरे बस भी करो यार.
15: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
14: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
16: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
17: जिंदगी एक रंगमंच है
18: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
19: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
20: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
21: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
16: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
21: इतना सब और प्राइस?
16: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
22: मैं हीरो.
23: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
24: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
23: Kya matlab?
24: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
23: But what if it doesn't work?
0: We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
24: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
1: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future. Sadia.
12: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
22: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
25: तुमसे मिलके दिल का है.
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
22: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. इश्क, इश्क है, इश्क, इश्क ये, इश्क, इश्क है.

Welcome back to your evening drive time show only on Fun Asia Radio 104.9 FM. This is the Bindas Show brought to you by your very own Banda Bindas, Marvin Das, and main deta hoon ji aapko company Monday to Thursday 5 to 7 p.m. September 17th is the date today, and that is a Thursday, which means my last show for this week. And today is a special day. Celebrating the birthday is our Prime Minister from India, Narendra Damodar Das Modi. देखो इनके नाम में भी दास है, दास होते ही कमाल के यार। इंडियन पॉलिटिशियन एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 26 मई 2014। भाइयों और बहनों, कर दीजिए आज इनको जन्मदिन की मुबारकबाद, दे ही दीजिए फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास, इट इज अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर नरेंद्र मोदी।

0: लवली लवली वंडरफुल ट्रैक अनिष्का धीर की आवाज में सुना जी आपने गाना विच इज फीचरिंग कुणाल खेमू इन द म्यूजिक वीडियो. द वीडियो इज कॉल्ड वाइब एंड इट्स आउट जस्ट अबाउट टू डेज अगो. ब्रांड न्यू ट्रैक है जी. आई लव द वाइब ऑफ दिस ट्रैक बाय द वे. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय आवर ड्राइव टाइम स्पॉन्सर अटॉर्नी ओमर ख्वाजा. इफ यू आर एवर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट स्लिप और फॉल दैट्स वन नेम दैट यू नीड टू हैव हैंडी एंड व्हेन द नीड कम्स गिव हिम अ कॉल. ही विल मेक श्योर दैट ही फाइट्स विद द इंश्योरेंस कंपनीज गेट्स यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व बी दैट फॉर एनी ऑफ योर यू नो गाड़ी का नुकसान आपकी सेहत का नुकसान आपके मेडिकल बिल्स एंड योर जॉब लॉस दे विल गेट दैट ऑल कवर्ड. दृश्यम द कंक्लूजन इज कमिंग अप वेरी सून. 10 घंटे पहले इसका एक ट्रेलर स्लैश टीजर आया. आई एम गोना प्ले दैट फॉर यू बिकॉज हु डजंट लव दृश्यम मैन.
1: हर साल 2 अक्टूबर को मैं मेरे बेटे से नजर नहीं मिला सकता. वो मुझे मेमे भेजती है. पापा पता है ना 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली सत्संग गए थे. वहां पे उनने पाव भाजी खाई थी. 3 अक्टूबर को वो वापस आए थे. ये विजय का ना टाइम अच्छा चल रहा. नहीं तो अपने थिएटर में नहीं हमारे जेल में बैठा होता.
2: दृश्यों के बाहर नजरों को डाल संभल कर चलना और खुद को

0: आदमी ने निशानी हो जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना, समझो उसका खराब टाइम शुरू।
1: हमें अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: बदला जितना पुराना होता है उतना ही बेरहम होता है।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे यार, घर मिल गया?
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
0: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
0: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
4: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
5: हाँ.
4: घर रिलोकेट करनी है?
5: हाँ.
4: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
5: हाँ भाई हाँ.
4: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
9: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
9: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
0: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

0: हंसना जो है ना, हंसना लाइफ में बड़ा जरूरी है। आजकल योगा चल रही है जी, लाफ्टर योगा। सूर्य सूर्य बुड्ढे इकट्ठे हो जाते हैं, जोर से हंसते हैं। हंसना कहते हैं बहुत जरूरी है लाइफ में। मेरे ना भंगड़ा के टीचर थे, भंगड़ा मतलब भंगड़ा, तो भंगड़ा का जोड़ा टीचर थी ना, वो भी यही कहता रहता था, मेरे को तुम्हारे दांत दिखने चाहिए, हंसो डांस करते हुए। तो मैं आपको एक बात बताया, तो ये हंसना इतना ज़रूरी है और हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़ा सा हंसे। अगर तो कुंवारे हो तो लोगों पे हंस लो, और अगर शादीशुदा हो तो खुद पे हंस लो। बंदा ये बिंदास है जी, बातें करता खास है जी। बस मैंने कहा आपको थोड़ी सी ज्ञान की बातें बता ही दें। वैसे भी ना हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग होते हैं, और कई ना कोई ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। शर्मा जी बड़ी गर्मी करवा रखी है, जैसे शर्मा जी ने ही जाके ओवन ऑन किए हैं सारे दुनिया भर के, ताकि आपको गर्मी लगे, है ना। कोई कहता है क्या बात है राजू जी, बड़ी बारिश हो रही है। भाई जब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होती है तब तुम नजर नहीं आते, जब दुनिया भर में कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तब भी तुम मेरे पास आए। तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई डॉक्टर साहब। खैर, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय दोज पीपल, जो कि आपको देते हैं जी सॉल्यूशन फॉर मेनी थिंग्स व्हेन इट कम्स टू योर ग्रोसरी नीड्स इन कहाँ पे, ग्रैंड प्रेरी, आर्लिंगटन, मैंसफील्ड। ऑल ऑफ दीज थ्री लोकेशंस आर बीइंग सर्व्ड बाय हिमालयन बाजार। दे आर राइट इन द इंटरसेक्शन, एट द इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे 20 एंड हाईवे 30, दैट इज इन ग्रैंड प्रेरी, एंड दे सर्व आर्लिंगटन, मैंसफील्ड एंड योर ग्रैंड प्रेरी एरिया। अगर आप उनके 5 माइल के रेडियस में हैं, यू गेट फ्री डिलीवरी व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर व्हिच इज $50 और मोर। उसके लिए सिर्फ आपको गूगल करना है हिमालयन बाजार ग्रैंड प्रेरी, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। इंडियन ग्रोसरी, नेपालीज ग्रोसरी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, उसके साथ साथ यू नो अरबिक ग्रोसरी, एनीथिंग टू डू विद साउथ एशियन ग्रोसरीज, यू विल फाइंड देम देयर। चाहे फ्रोजन सेक्शन हो, सारे फ्रेश प्रोड्यूस हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, या फिर उनका हलाल मीट हो। फॉर द नेपाली मार्केट दे हैव वाटर बफ एज वेल। एंड शाम को 5-6 बजे के बाद आपको वहाँ पे मिलता है जी लाइव टी, कॉफी, पकौड़े, एंड वेरी सून यू विल बी गेटिंग पैटीज एंड समोसाज एज वेल। सो मेक श्योर टू चेक दम आउट, दैट इज हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी।
1: या वांट टू फील दैट, कम ऑन गर्ल, बी द बीट। Check this out now.

0: And that's the voice of Sonu Nigam that you'll be hearing this month, September 26th, at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Yaad rakhiye, it's date ko 26th of September, 8:30 p.m. Things start to happen. Live in concert will be your favorite, our parents' favorite, and maybe some of your kids' favorite as well. Sonu Nigam, the voice jisne hame bahut sare gaane diye aur aise gaane diye ke wo hamare dil mein bas chuke hain bhaiya. Aapka favorite singer, wo iconic voice leke aapke liye live aa rahe hain. Tickets are available at ticketmaster.com. That's ticketmaster.com. Or you can call them for more information. 855-360-SHOWS. That's 855-360-SHOWS. Sonu Nigam, live in concert. Exclusive media partner is Funasia Network. Make sure ke ye tickets to aap lein, yaar, because this show and Sonu Nigam singing live is something you do not want to miss. And you do not want to miss what I'm about to tell you. Pehle to ye bata dun ki agar aapka business hai, you're looking for some friend, some God to help you, then God is giving you the name of Shahid Panjwani, who is with the SBA loan experts, and they are the ones that can get your business approved for a loan. Jab aap har jagah thak jate hain, family wale mukar jate hain, tab Shahid Panjwani aapke kaam aate hain. Let me call him on the airwaves of Funasia. Good evening, Shahid bhai. How are you?
1: Good. How are you? Thanks for having me.
0: God is great, sir. Life is wonderful as always. Mujhe ye bataiye ke for the business owner market that we have in Dallas, I think ये जो डालस की मार्केट है, दिस इज फुल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स, एंड इट्स सो गुड टू सी आवर कम्युनिटी डूइंग वेल. नाउ फॉर द पीपल दैट वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड दे आर लुकिंग फॉर अ लोन, हाउ कैन यू हेल्प देम एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर समबडी हु इज स्टार्टिंग समथिंग न्यू?
1: That is so true. By that, we are basically, business mindset होता है. दो ड्रीम्स होती है. पहले तो घर खरीदना है, और ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदनी है, बिजनेस खरीदना है. The way we can help is get you the loan with the lowest down payment possible to start your business or to buy a business. I'll give you a quick example to all the listeners, simple numbers ke through. Let's say agar aap ek business buy kar rahe ho aur $1 million ka total project hai. Aapko 10% down dena hai, 900K bachta hai, 900K plus closing cost ki loan ho sakti hai. On top of that, what happens is what we have seen in past business owners, when they buy a business, 2-4 months later, they will come back and tell us, कि भाई मुझे और थोड़ी सी लोन चाहिए, बिजनेस ग्रो भी करना है. होता यह कि जब हमने अब बिजनेस खरीदने की लोन करी, 2-3 महीने के बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है दोबारा उसी बिजनेस पे लोन करना. सो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग इज वी गिव एडिशनल वर्किंग कैपिटल एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. मीनिंग आपने 10% डाउन दिया, 9 लाख का लोन हो गया, बाकी क्लोजिंग कॉस्ट भी लोन में एड हो गई. वी विल गिव यू अनदर 50-100K ऑफ वर्किंग कैपिटल टू ऑपरेट द बिजनेस. सो मेनी पीपल लुक एट इट इन अ वे कि हमने तो 10% दिया था 100K, हमारे को वर्किंग कैपिटल के तौर से हमारा डाउन पेमेंट वापस मिल गया. बेसिकली यू बॉट द बिजनेस विथ ईदर 5% डाउन पेमेंट, और इन मेनी केसेस वी हैव डन द फुल डाउन पेमेंट एज वर्किंग कैपिटल, सो यू बॉट द बिजनेस एज जीरो आउट ऑफ पॉकेट. होपफुली आई एम नॉट कंफ्यूजिंग द लिसनर. इफ एनीवन इज इन द मार्केट, कॉल अस, वी कैन टॉक वन ऑन वन एंड क्लेरिफाई मोर इन बेस्ड ऑन योर सिनेरियो.
0: 8177863338 is the phone number for Shahid Bhai. 8177863338. And if you have any confusions, any concerns, give him a call. And I can tell you from experience, he knows what he's doing. He's helped me and my friends quite a lot of times. Thank you, Shahid Bhai, for being here. Always a pleasure.

0: Bali Sagu with that track that never gets old. This was called Noori. Aaja Re O Mere Dil Baraja. Beautiful track. The way he mixed it is also amazing. And one more amazing thing that came to Frisco is Hoco. Hoco, one of India's most loved food brands. Aa chuka hai ji Frisco. Wahan pe rukiye, chana puri khaiye, sandwiches khaiye. Legendary cold cocoa pijiye. And if you like the cold cocoa, jaise kehte hai na Siddhu paaji aur tali thoko. Students get 20% off with a valid ID. And regular employees get 20% off lunch Monday through Friday. Jaiye, check kijiye inko right here in the heart of Frisco on Preston Road.
1: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
2: ब्रेकिंग न्यूज होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नो हिडन फीस नो सरप्राइजेस और हाँ सबसे बड़ी खबर उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज हजारों फैमिलीज का भरोसा विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 4697343338 4697343338 माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज Powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
3: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
4: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
3: And pistachio lamb chops?
4: Full on flavor ka fusion.
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: Dad, property papers kahan hai?
7: Laptop mein.
6: Investment?
7: Google Drive.
6: Insurance? Passwords?
7: Beta, don't worry. Mujhe sab pata hai.
6: Dad, wahi to problem hai. Sirf aapko pata hai.
8: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
9: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
8: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
10: जीनी हुकम मेरी अकल हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
11: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
10: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
11: नो प्रॉब्लम अका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
10: और एंटरटेनमेंट
11: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
10: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
11: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
8: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
12: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
8: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
12: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था
14: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर
15: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.
16: Lights, mic.

0: Wishing PM Modi a very happy birthday from the team here at name that has taken India to quite some places. कौन सी places? ये मैं नहीं बोलूँगा. हर बंदे का अपना अपना मतलब होता है ना point of view. मैं अपना क्यों share करूँ आपके साथ? आपने कौन सा अपना share किया मेरे साथ, है ना? पर आज बता रहा हूँ आपको कि it is the Prime Minister of India's birthday. Very happy birthday to Narendra Damodar Modi. For now it is time to talk about आपके घर के जो minister है ना वो होती है भाभी. और अगर आपने अपना क्रेडिट ख़राब कर लिया है किसी वजह से, आपने कोई लोन ले लिया था, आपको कुछ ज़रूरत थी उस टाइम पे, कुछ फैमिली प्रेशर आ गया था, कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई थी, आपको कुछ कुछ चीज़ें बिजनेस में लॉस हो गया था, वट एवर इज़ द सिचुएशन, दैट सिचुएशन कैन बी विद एनीबॉडी. नाउ इफ दैट इज़ द सिचुएशन विद यू एंड यू आर ट्राइंग टू गेट यू नो पेस्ट अप टू योर पेमेंट्स एंड लोन उतर ही नहीं रहा है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वहीं की वहीं खड़ी है, उरा डेट इज़ द सोल्यूशन. और मैं नहीं बात करूंगा, आई कॉल अमन टू टेल यू मोर अबाउट उरा एंड हाउ दे कैन हेल्प यू गेट आउट ऑफ डेट. गुड इवनिंग अमन, हाउ आर यू?
1: यहाँ फाइनेंशियल सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से एक बार फिर से नमस्कार. और ये बात बार बार हर बार यही याद कराता हूँ कि महीना गुजर रहा है, आधा महीना हो चुका है, और आधे महीने में वो गलती फिर मत दोहराइए जो पिछले महीने आप दोहरा चुके हैं, यानी क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट. क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट देने से क्रेडिट कार्ड नहीं उतरता, ये आप जान चुके हैं. पिछले एक साल से कुछ महीनों से अगर आप मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि हर महीने दर महीने आप पेमेंट करते हैं, अगले महीने फिर क्रेडिट कार्ड वहीं का वहीं खड़ा नजर आता है. तो अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो जाए तो आप उरा को कॉल कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं. हमारा जो क्रेडिट कार्ड का प्रोग्राम है उसमें आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा आधे से ज्यादा माफ हो जाता है. और ना सिर्फ आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाता है बल्कि इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड की आसान किस्तें बना दी जाती हैं ताकि आप आराम से उस बाकी जो आधा बचेगा उसकी आसान से किस्तें आप उतार सकें. अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड के साथ साथ पर्सनल लोन भी है या फिर गाड़ियां जो रिपोजेस या टोटल हो चुकी हैं उसको भी नेगोशिएट करके आधा माफ करवाना चाहते हैं तो बेहिचक कॉल कीजिए अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ इट वर्क्स. आप हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं ताकि आप आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवा सकें. जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरा डायरेक्ट नंबर है कॉल मी 9167637 6355 9167 6355. अगेन 916 एरिया कोड 7763555. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. लेकिन मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए ताकि आपका आधा कर्जा माफ करवाया जा सके.

0: बिल्लू द बार्बर फ्रॉम द सॉन्ग मूवी, मतलब समझ गए ना यार, इंग्लिश ऐसी है, आपको समझ आ गया ना, बिल्लू बार्बर फ्रॉम द सॉन्ग मूवी लव मेरा हिट हिट जस्ट लाइक माय शो इट्स हिट हिट, एक वो फिनिट आता था उसका नाम भी हिट था, कहीं वो ना समझ लीजिएगा कि ऐसा वाला हिट नहीं है जिससे मच्छर मरे, ये वो वाला हिट है जो आपको कानों पे अच्छा रस भरे। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय टेक्सास स्टार रीहैब, जो कि आपके लिए लेके आए हैं जी सॉल्यूशंस व्हेन इट कम्स टू एनी ऑफ योर पेन, दे डू पेन मैनेजमेंट एंड दे मेक श्योर दैट यू आर वॉकिंग विदाउट एनी यू नो एलोपैथिक मेडिकेशन या पेन किलर्स खा खा के, वो प्रेस नहीं करते आपकी प्रॉब्लम को, दे एक्चुअली क्योर द प्रॉब्लम। एंड द वेबसाइट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन इज texasstarrehab.com, texasstarrehab.com. टू लोकेशंस serve you, one is in Irving right on Beltline and 635, the other one's in Frisco, and they offer everything from physical therapy, sports rehabilitation, pelvic floor therapy, massage therapy and more. Jaiye website pe, check them out. I am personally recommending you because I've used their services. One-on-one care dete hain, and the guy who is behind this, his name is Rushi, who is himself a physiotherapist and has given all his life to physiotherapy. One more track, iske baad chota sa commercial break. This is the guy that took everything away just with one track, man, and that was King.
1: Carnival. The Last Ride.

या भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए जब

0: If you're looking for a home, अभी आपने ऐड सुना नहीं है तो मैं सुना देता हूँ कि नवनीता खेमका बन चुकी हैं जी रियल्टर। जी हाँ, वही नवनीता, 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, गल हिंदी हिंदी बॉल और झिलू राम वही नवनीता खेमका इज नाउ रियल्टर विद केलर विलियम्स एंड शी कैन गेट यू योर ड्रीम होम। मार्केट नॉलेज के साथ साथ क्रिएटिव मार्केटिंग स्किल्स एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इज व्हाट मेक्स हर यूनिक, कमिटेड टू मेकिंग योर रियल एस्टेट जर्नी स्मूदर बिकॉज एवरी होम हैज अ स्टोरी एंड शी विल क्रिएट योर्स टुगेदर विद हर। कॉल हर एट 347-449-4242. That's 347-449-4242. We're celebrating one more birthday today and that is of this actor jinka main baad mein batata hu aapko. Pehle I am gonna do a contest with you. And contest kya hota hai ji? Giveaway hota hai na yaar, wo khelenge na, khelenge, chalo khelenge, khela khelenge. Khela mein kya hai aaj? आज खेला में ये है जनाब कि मिराज लाउंज आपके लिए जो मिकिनी में खुल चुका है, दे आर गिविंग यू अ डील, गेट $20 ऑफ $50 के बिल पे आपको $20 की बचत मिलेगी। टू विनर्स विल बी सिलेक्टेड, दो विनर, पहला और दूसरा, ठीक है जी। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, जो मुझे देगा क्रिएटिव आंसर एंड जो देगा सबसे बढ़िया यूनिक क्रिएटिव आंसर उसको मिलेगा। सवाल मेरा ये है कि हम देसियों को ना सजेशन, राय, यू नो, एडवाइस देने की बड़ी आदत है ना। जहाँ भी आप जाओ, चाहे हम नेपाल से हैं, हम इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से, सब अपनी अपनी राय देने में आगे होते हैं। इस बात में आपकी क्या राय है? क्रिएटिव आंसर्स की दुकान खोल लो और आ जाओ स्टूडियो के नंबर पे 972-235-5555। याद रखिएगा कि मिराज लाउंज जो है ये एलन में लोकेटेड है। दे ब्रिंग यू डिलिशियस हुकर्स, फूड ऐसा दैट इज फैंटास्टिक, कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट्स, हैप्पी आवर मंडे टू थर्सडे 11 AM टू 6 PM एंड लेडीज नाइट एंड कॉलेज नाइट। इस जगह पे आपको मिकिनी में मिलेगा $20 ऑफ $50 बिल। सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम देशियों को राय, सजेशन, एडवाइस देने की बड़ी आदत होती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? है ना, हमें राय देने की आदत होती है पर आपकी क्या राय है बताइए मुझे कॉल करके 972-235-5555। और जो आपकी राय है इस बारे में वो जरा क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोच के बताइएगा 972-235-5555। तो ये जो हमारे देसी लोग बहुत बात करते हैं, सजेशन देते हैं, उनको अपनी राय देनी होती है, इस बारे में आपकी क्या राय है? सीटियां बज गई हैं, देखता हूँ कौन है जो देना चाहता है इस बारे में उनकी राय। गुड इवनिंग टू यू, हेलो, हाय, कौन बोल रहा है?
1: चांद बोल रहा है।
0: कौन बोल रहा है? चांद?
1: चांद नहीं, चांद तो ढल जाएगा थोड़ी देर में।
0: चांद तो ढल नहीं जाएगा, चांद निकलेगा भाई थोड़ी देर में, तुम ढल जाओगे, बातें गलत गलत कर रहे हो यार।
1: डने डने डने।
0: अच्छा बताओ भैया, बेटा ये बताओ बेटा कि ये दुनिया में हम देशों को राय देने की बड़ी आदत है, इस बारे में तुम्हारा क्या राय है?
1: मेरी ऐसी राय है,
0: ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, इस बारे में आपकी राय ऐश्वर्या राय है?
1: मेरी राय ये है कि राय तो देनी चाहिए, बट राय लेनी है वो अपने ऊपर है।
0: और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको फिलहाल क्या करना चाहिए, अगर ट्रैफिक ज्यादा दिखे आपको राह दे देनी चाहिए ताकि कोई और वहां से निकल जाए। पर इनका अच्छा लगा मुझे कि हमारी राय है कि

0: राय
1: बट
0: देनी
1: राय लेनी है वो अपने ऊपर है।
0: और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको फिलहाल क्या करना चाहिए, अगर ट्रैफिक ज्यादा दिखे आपको राह दे देनी चाहिए ताकि कोई और वहां से निकल जाए। पर इनका अच्छा लगा मुझे कि हमारी राय है कि राय देनी चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है कि हम देशियों को इतनी राय देने की क्या वजह क्या होती है हमारी, इस बारे में आपकी क्या राय है? जरा आ जाओ स्टूडियो की लाइन पे, 9722355555 नंबर टू स्टूडियो, क्रिएटिव ढक्कन खोलें, देखते हैं हमारे पास कौन कौन धुरंधर है जो दिमाग के अलग अलग कोनों से सोच सकता है कुछ। शायद आपको सवाल समझ नहीं आया। देखो जी, हम देशियों को राय देने की बड़ी आदत होती है ना, इस बारे में आपकी क्या राय है ये पूछ रहा हूँ आपसे। आ जाओ

0: All right, let's see, who do we have next?
1: Hello?
0: Haan ji, hello, good evening. Who is this?
1: Good evening. Mera naam Shoma hai. Actually, Shoma. I'm desi sabhi, very money conscious hai. Hmm. Har cheez mein bachat karte hai. Aur ye cheez jo hai, ye free mein hai.
0: Oh.
1: So ye free mein hum baatte rehte hai.
0: ये फ्री में है इसलिए हम कहते हैं उठा के ले जा चल है?
1: Yeah, exactly,
0: कभी कभी तो कभी कभी exactly. तो कभी कभी तो हम ये भी नहीं कहते उठा के ले जा, हम फेंक ही देते हैं ऊपर, ये ले.
1: बिल्कुल, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, हम तो बड़े दिलदार हैं, हम तो आपको दिए जाएंगे, पहले जाएंगे ज्ञान.
0: क्या बात है सोमा जी, आपका जवाब मैंने रजिस्टर कर लिया है, थैंक यू वेरी मच. सुनते रहिए, शायद आप ही विनर हों. फिलहाल कौन है अगला, करते हैं इनसे बात. गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस?
2: अमित.
0: अमित भैया, क्या हाल चाल?
2: I'm good, Marvin. How are you, sir?
0: मैं अच्छा हूँ सर. मेरे हाल चाल पूछने से ही आप हंस पड़े, क्या बात है मेरे हाल चाल पूछने में ना?
2: नहीं, उतने भी अच्छे दिन नहीं आ गए आपके सर.
0: क्या बात है, ये आया कोई, ये आया कोई आगे सामने है धुरंधर, क्या बात है अमित भैया. अच्छा अमित भाई, इसमें आपकी क्या राय है?
2: सो I mean, obviously you figured out who this is, right? Amit Tandurchak.
0: Yaar,
2: dekhe, I mean, talking of spices, you don't need to tell me. Mustard is one of the cheapest spices, no matter which country you are in, okay? So, matlab jo sasti cheez hai na, to matlab in desi log pocket mein baantte hai. Matlab they don't give a care, you know, ki bhai ye isko kya hona chahiye, iska banda kya karega, they don't care.
0: Sasti hai to baant do. सस्ती है तो बांट दो, मतलब
2: यू कैन गूगल मस्टर्ड सीड राइट नाउ, इट्स ऑन द बॉटम एज फार एज इंडियन
0: बिल्कुल तभी मैं
2: लिस्ट इज कंसर्न्ड,
0: सस्ती है तभी मैं तभी देख रहा हूँ कि आजकल दिवाली पे पिस्ते बादाम और चिलगोजे खत्म होते जा रहे हैं, मूंगफली ज्यादा चल रही है. देखते हैं जी अमित भाई आपका जवाब दुरुस्त था कि नहीं. गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस?
3: मरियम
0: जी, कैसी हैं?
3: बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है?
0: मैं अच्छा हूँ जी. पापा मम्मी कहते थे यू आर अ गुड बॉय, मैं उनका कहा कैसे टाल दूं.
3: बिल्कुल सही बात है.
0: बताइए.
3: मुझे लगता है कि हमें जो है अपनी राय अपने तक ही रखनी चाहिए, लोगों को नहीं देनी चाहिए, अनलेस के वो हमसे मशवरा या राय मांगते नहीं है.
0: जी,
3: हम देसियों को होता है कि हम राय देने में सबसे आगे होते हैं, क्योंकि खुद पे जब बारी आती है तो बहुत सोच समझ के करते हैं, अगले के ऊपर हम ट्राई मारने के लिए उसको राय दे देते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या होना है, सोचते नहीं है अपना.
0: देखो,
3: तो राय देने के लिए हर वक्त रेडी हैं.
0: मेरे को तो मरियम जी ना राय देना इस पूरे कॉन्सेप्ट से विश्वास उठ गया, क्योंकि मैंने मांगी थी ऐश्वर्या राय, पहले बोले बेटा आपसे बड़ी है, फिर बोले कि वो फिल्मों में आती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मार्विन. बस तब से मेरा इस राय से संबंध ही टूट गया मरियम जी, विश्वास ही उठ गया दुनिया से. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. एक लास्ट कॉल लेते हैं. गुड इवनिंग, 20 सेकंड है आपके पास, फटाफट बताइए आपकी क्या राय है.
4: हेलो, मैं कहती हूँ कि आप राय वही दें जो आप प्रैक्टिस करते हैं. सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच.
0: वंडरफुल.
4: सो डू नॉट गिव राय टू एनीवन इफ यू योरसेल्फ डू नॉट प्रैक्टिस.
5: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
6: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
7: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
8: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे.

0: 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
1: Beta, 95% aaye?
2: हाँ मम्मी.
1: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
0: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डॉलर्स. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: Zindagi ek safar hai suhana.
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 a.m. टू 8 p.m. वॉक इन एनी टाइम. 9191 Suite 205, Frisco.
6: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
2: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
7: डील कहाँ?
2: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
0: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
8: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
9: तुमसे मिलके दिल का है.
8: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 p.m. onwards एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
10: तू छत पे कपड़े सुखा.

लेडीज, मुझे पता है कि आपको ये लगता है कि हम मर्द आपकी बात मानते नहीं है, आपको ऐसा लगता है ना, मेरी बीवी को भी लगता है, पर मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपकी बात मानते हैं। अगर मानते ना होते तो आज तक जिंदा होते?

0: नहीं सच बताओ, आपको क्या लगता है वो जिंदा होते हैं आपके पति अगर आपकी बात ना मानते होते? मानते हैं हम, हाँ कभी कभी सुनते कम है, और हमारे ना फिल्टर होते हैं कानों में, वो ऑन हो जाते हैं जब हमने अपनी मतलब की बात सुननी होती है, और जब हमारे मतलब की बात ना हो तो फिल्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। पर जब आप हमारे सामने खड़ी होती हो तो हमारे सारे फिल्टर एकदम स्ट्रीमलाइन करके काम करते हैं। यार आई वांट टू कांग्रेचुलेट अभिषेक शर्मा, यार क्या बात है मैन। आई मीन आई हैवंट सीन द गेम टुडे एंड आई एम अब जाके मैं घर जाके हाइलाइट्स देखूंगा, पर हाइलाइट्स का वो मजा नहीं आता है। बट व्हाट अ गेम इंडिया प्लेड टुडे मैन। तीसरा T20 था विद अफगानिस्तान, वी वन द लास्ट टू एंड बोथ गेम्स अभिषेक शर्मा स्कोर्ड रियली वेल इन द लास्ट गेम एंड पहली बारी में नॉट टू गुड, बट संजू सैमसन ऑल द टीम इज डूइंग सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। आज की जो गेम थी, इंडिया वेंट इन टू बैट फर्स्ट, दे मेड 221 रन्स इन 20 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और अब रेडी हैं आप, अभिषेक शर्मा जिन्होंने की जी बल्लेबाजी ओपन अलॉन्ग विद संजू सैमसन। संजू सैमसन मेड 50 रन इन 35 डिलीवरीज, 2 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस इन हिज इनिंग, एंड दैट वाज 50 ही गॉट बोल्ड आउट बाय राशिद खान, कॉट बाय उमर अजी। बट अभिषेक शर्मा ही मेड 108 रन इन 34 डिलीवरीज। जी हाँ, ये सेंचुरी, ही वेंट टू बैट एट 7:30, 8:09 पे ही वॉज ऑलरेडी एट 100 रन इन 30 डिलीवरीज। यहां 30 गेंदों में 100 बनाया, द फास्टेस्ट T20 100, एंड ही हैड 9 बाउंड्रीज एंड 11 सिक्सेस इन दैट इनिंग। दैट मीन्स 11 छक्का 66 एंड 34 दैट केम फ्रॉम बाउंड्रीज। दैट मीन्स हिज गेम टुडे वॉज 100 रन इन एक्चुअली 20 डिलीवरीज, जिसमें 11 छक्के और 4 चौके शामिल थे। व्हाट अ वंडरफुल गेम दैट वाज। Somebody is with us, let's talk to them. Good evening, Fanesia, radio volume low, yours up. Who's this? Hello, are you talking to me or should I go?
1: Yeah.
0: All right, I don't think that was a well connected call there, but nonetheless, man, what a lovely performance. I am very happy for Abhishek Sharma with that inning. I'm going to take you to the next track. Uske baad baatein karte rahenge khaas. This is your evening drive time show, the one and only The Bindaas Show, only on Fun Asia.

And in the meantime, Soma ji, if you're listening, आपने राय दी थी और अमित आपने बताया था कि सस्ती चीजें हम बांट देते हैं और सोमा जी ने कहा राय जो है वो फ्री होती है इसलिए हम लोगों को देते हैं. तो प्लीज गेट योर कॉल्स बैक टू माई स्टूडियो 972-235-5555 सो आई कैन गिव यू योर डील एट मिराज हुका लाउंज. Once again, the winners for that are Soma and Amit.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
6: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

आ गया आ गया आ गया, एआई आ गया है जी। एआई के ज़माने में हमें ये नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा जॉबों का, क्या होगा हमारे स्किल सेट्स का, क्या हमें एआई की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्या हमें एआई को और समझना चाहिए। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड फॉर यू बाय 4-time TEDx स्पीकर्स एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेज, जिनका नाम है शिल्पा एंड कपिल कुलक्षेत्रा। दे आर कमिंग राइट इन DFW ऑन द 19th of September, यानी कि परसों, दैट इज सैटरडे। आप रजिस्टर कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री एट playitfull.com/Dallas. That's playitfull.com/Dallas and start building your powerful career transformation today. Feeling stuck, wondering if AI and workplace changes are leaving you behind? क्या आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए? These people are the right ones who can guide you in the right direction. Shilpa and Kapil Kulkshetra for a powerful growth career growth workshop this September 19th, Saturday. Register at playitfull.com/Dallas. One more track and then I am gonna be go gone.

वखरा स्वैग, मतलब डिफरेंट का टाइप का स्टाइल है यार भाई का, जैसे कि मेरा बादशाह, दैट वाज वखरा स्वैग, केम आउट इन आई थिंक 11 इयर्स अगो मैन, 11 साल इस गाने को भी आए होंगे, पता नहीं लगा वक्त कहाँ चला गया। फेस्टिव सीजन आ चुका है यार, अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरी मम्मा को मेरे को गिफ्ट भेजना है, दीदी को भेजना है, पापा को भेजना है, या आप अमेरिका में रहते हैं, आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज दूर दराज मुल्कों में हैं या फिर यूएस के अदर स्टेट्स में हैं, डू नॉट वरी, आउटफिट से लेके मिठाई से लेके नमकीन, ऑल ऑफ योर फेवरेट गुडीज कैन बी शिप्ड विद SFL वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब। डोर स्टेप पिकअप करेंगे, आपके घर से आपका सामान उठाएंगे, आपकी मनचाही डेस्टिनेशन पर डिलीवर करेंगे। ओशियन शिपिंग लार्जर आइटम्स के लिए अवेलेबल है, जैसे कि पूजा मंदिर, झूलाज एंड फर्नीचर। फॉर शॉपिंग एंड मूविंग विद इन द USA और फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, एक ही नाम याद रखिए, SFLWorldwide.com। SFL, ship for less, man. These guys are the ones that make sure that your shipment is done at the least price while giving you excellent customer service and quality work. SFLWorldwide.com is that website for you, or give them a call, 1-800-691-2335. SFL Worldwide, bringing festivities closer to home. With that, it is time for me to say bye-bye, adios, good night. But with a promise, कि अगर उस ऊपर वाले ने जिंदगी दी तो मैं फिर से आऊंगा जी मंडे को, एंड आई विल गिव यू कंपनी 5 to 7 ऑन योर फेवरेट स्टेशन जिसका नाम है फन एशिया रेडियो, विद योर फेवरेट इवनिंग ड्राइव टाइम शो, द बिंदास शो। यू नो द यूनिवर्स लिटरली सिट्स यू डाउन एंड ब्रेक्स यू टू हम्बल यू। कई बार हमें लगता है हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारी कोई भी चीज़ सीधी नहीं चल रही है। दैट इज बिकॉज यू मेंट टू गो थ्रू दैट ब्रेक डाउन, यू मेंट टू ब्रेक योर नॉर्म्स, यू आर मेंट टू बी हम्बलाइज्ड, एंड दैट इज वाई नेचर गिव्स यू दोस टफ टाइम। आपको बिल्कुल अकेला कर देगी और फिर आपको दोबारा से बनाना शुरू करेगी, गिव यू बैक एवरीथिंग 10 times टू प्रूव हाउ पावरफुल यू आर, एंड दैट एवरीथिंग हैपन्ड फॉर अ रीजन। सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखिए और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, दिस बैड टाइम विल गेट ओवर एज वेल, एंड द गुड टाइम्स वन एवर दे आर चेरिश दम, बिकॉज वन डे वी वॉन्ट हैव टाइम। घड़ियाँ चलती रहेंगी, कैलेंडर आगे बढ़ते रहेंगे, बस हम ना होंगे। विद दैट थॉट, इट इज अ गुड नाइट। आफ्टर मी इट्स इपी द हिपी।